وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? असल बात यह है कि आज ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुक करके सवाल और जवाब करेंगे। पैरोकार अपने पेशवाओं से कहेंगे कि तुम ही हमारे पास दाईं तरफ से आते थे। वो कहेंगे, नहीं बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले न थे और हमारा तुम पर कुछ जोर न था बल्कि तुम ही सरकश लोग थे। सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई कि अब हम अजाब के मजे चखेंगे।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि।

ओ मेरा रंग भी नहीं मेरा रूप भी नहीं किस गल दिया सोनिया मान करा मेरा इश्क भी जामी वांगा नहीं मेरा होश भी वांगे बिलाल नहीं मैं तड़पा दूर मदीने से इत्थे बचन दा कोई हाल नहीं मेरी मुश्किल नूं हल करिया का तेरे वास्ते कोई महाल नहीं मैं तड़पा दूर मदीने से इत्थे बचन दा कोई हाल नहीं ए अवेसी अरीजा करे दाई नित नातियां तेरियां पढ़दाई खुश्ती फरीद खुश्ती फरीद ते शाद वल लुखड़े नरा समियाद वल इजा झोंक थी सी आबाद वल इजा झोंक थी सी आबाद वल यह नए नारा सी हिकमणी ए अवेसी अरीजा करे दाई नित नातियां तेरियां पढ़दाई लख शौक मदीने आवन दा मेरा होर तक कोई सवाल नहीं मैं तड़पा दूर मदीने से इत्थे बचन दा कोई हाल नहीं मेरी मुश्किल नूं हल करिया का तेरे वास्ते

0: KPA इलाइक़े ॾे रासमल ख़ान में चेक पोस्ट भरिसां अफ़गादी हमिलो छह पुलिस अहलकार समेत 12 ॼणा ज़ख़्मी शहीद। 38 खां वधीक ज़ख़्मी अफ़गादी बमबार बारूद सां भरियल गाॾी खे दराज़ दा में अमुन मेला चेक पोस्ट सां टकरायो। शहीद थियल में छह पुलिस अहलकार, हिकु कस्टम ऑफिसर ॿ उर्तूं ऐं हिकु ॿार बि शामिल। ज़ख़्मियुनि खे खणी वेंदड़ रस्ते फायरिंग बस रज़ाकार खेत्र ज़ख़्मी सिक्योरिटी फोर्स इलाइक़े में पहुची सर्चा ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। बलोचिस्तान जे शहर डेरा भुगती में ज़िले चेयरमैन जे घर ते हमिलो, जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारिजी विया। 6 गिरफ़्तार अमन फ़ौज जो 1 रज़ाकार शहीद, 3 ज़ख़्मी थिया। दुकीमे रोड तामीर कंदड़ कंपनी जे कैंप ते दहशतगर्दनि जो हमिलो, 18 पोरे अॻवा फायरिंग जी ॾे वठ दौरान 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 2 ज़ख़्मी।
1: खान अफरीदी तरीके इंसाफ के अंदर अपनी साख खो चुके हैं। इन्होंने मायूस किया है अपने कारकुनान को भी, अपनी पार्टी को भी। इनके पास अब जवाब नहीं है कि ये सियासी तौर पे लीड कर सकें। और आप 5 अक्टूबर की डेट दें या 5 अक्टूबर 2028 की डेट दें, अब आपकी किसी डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी बुजदिली, आपकी काहली, आपकी सियासी नाअहली, इंतजामी नाअहली तो थी मगर आपकी सियासी नाअहली भी अब साबित हो चुकी है। और सियासी तौर पे कोई मोबिलाइजेशन नहीं है केपीके के अंदर। हमने तो हिफ्ज़े मातकदम तैयारी की कि आएंगे तो हमने अपने शहर का, अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मगर ये बुज़दिल ना है लोग जिनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा, ये अपनी सियासी साख मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। मगर सियासी तौर पे जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि सोहेल खान अफरीदी की रिट अपनी पार्टी पे खत्म हो चुकी है। इतनी सियासी कमजोरी कभी भी नहीं देखने में आई थी इन 13.5 साल में जितनी आप देखने में आई है।
0: पीटीआई जो 27 सितंबर वारो मार्च खोटियो जबल निकतो कुओ साबित थियो आहे। सोहेल अफरीदी पहिरियों इंतज़ामी सतह ते नाकाम हो, हाणे सियासी सतह ते बि फेल थियो आहे। सुध समा वारे वफ़ाकी वज़ीर अताहर चयो आहे त सोहेल अफरीदी पंहिंजी पार्टी तां रिट ख़तम थी वई आहे। पीटीआई जो दहशतगर्दनि सां बि गठ जोड़ आहे जंहिं सबबि हमलनि जी मज़बत बि नाहे कंदी। अख़्तियार वली चयो त पीटीआई खे लॉन्ग मार्च खां भॼणो ई हो त ऐलान छो कयो।

त पहिरें छो न थियूं कयूं वञनि। केपी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी वफ़ाक़ी हुकूमत ॻाल्हियुनि जी आछ करे छॾी। पिशावर में सीनियर साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे सोहेल आफरीदी चयो त लॉन्ग मार्च में अञा 7 ॾींहं आहिनि, पोइ बि ॻाल्हियूं इहे थियणियूं आहिनि त हाणे छो न थियूं कयूं वञनि। ॻाल्हियुनि लाइ पहिरें बि तयारु हुआसीं, हाणे बि आहियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत असांजे एस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हि थियण न ॾेई रही आहे। मुल्क में हिकु शख़्स जी ॻाल्हि हले थी जंहिंजो नुमाइंदो मौसम नक़वी आहे।

केस में नामजद ऐं पीए जी गिरफ़्तारी लाइ पुलिस खे स्पीकर खां इजाज़त वठणी पवंदी। वफ़ाक़ी गरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी के पी असेंबली जे लिखियल ख़त ते तनक़ीद। मोहसिन नक़वी के पी असेंबली जो लेटर जारी कंदे चयो आहे त जेकॾहिं को एम पी ए कंहिं माण्हू खे क़तलु करे छॾे त छा पुलिस खेसि गिरफ़्तार करण खां अॻु बि स्पीकर जी इजाज़त जो इंतज़ार कंदी। कानून जे नज़र में सभिनी जे बराबरि हुजण जो हीउ हिकिड़ो मिसाल आहे। वाह अवां जारी रखो। छा हिन खे रियासत मदीना चयो वेंदो? सऊदी अरब पारां इलाइक़ाई छिकताण में घटिताई लाइ पाकिस्तान ऐं कतर जी कोशिशुनि जी हिमायत। आलमी जहाज रानी जे तहफ़ुज़ ते ज़ोर। गयल क़ौमुनि जे जनरल असेंबली इजलास ख़िताब कंदे सऊदी परॾेही वज़ीर शहज़ादे फैसल बिन फरहान चयो आहे त सऊदी अरब समेत ख़िते जा मुल्क ईरानी हमलनि जो शिकार थिया। हुसियुनि जा हमला मुल्की ऐं इलाइक़ाई सालमियत लाइ ख़तरो आहिनि। नार जो मुंतवान ऐं सप्लाई चेन जे तसलसुल जी सलामती सां गॾियल आहे। पाणी गुज़रगाहनि खे ब्लैकमेलिंग जे हथियार तौरु इस्तेमाल न करणु घुर्जे। हू फलस्तीनी अवाम खे बेघर जो जलावतन करण जो सभई साज़िशूं रद्द कनि था। यमन में सकाम ऐं शहरियुनि जे तहफ़ुज़ जो ज़रूरत आहे।

0: ईरानी सदर मसूद पेज़ीश्कियान सऊदी अरब ऐं हुसैन विच में जंग बधी लाइ टियाकड़े जी आछ करे छॾी। सदर मसूद पेज़ीश्कियान चयो आहे त यमन में जारी जंग सां ईरान जो को बि तालुक न आहे। ईरान तकरार जे हल लाइ मदद ॾियण लाइ तयारु आहे। अमरीका खिते जी दौलत ते कंट्रोल बरकरार रखण लाइ मुस्लिम मुल्कनि खे विड़ाए रहियो आहे। अमरीका ऐं इसराइली खिते जे कुझु मुल्कनि खे जंग में धिकियो आहे। ईरानी क़ौम अमरीकी ऐं इसराइली साज़िश ख़िलाफ़ जमी बीठल आहे।
1: So badly, you know, you don't read that, well, you don't see that in the fake news, but we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. Last night we had 29 ships come out. They want to make a deal. I think that's fine. I like making a deal too, but that deal would not be acceptable.
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग बदी बाबति ईरानी तजवीज़ रद्द करण जी तस्दीक करे छॾी। ट्रंप चयो आहे त ईरान जंग हाराए रहियो आहे। अबना हॉर्मुज़ बि खोलण लाइ तयारु थी वियो आहे। मां पाण मुआदो चाहियां थो, ईरानी डील क़बूल न आहे। ट्रंप बि अबना हॉर्मुज़ खे ट्रंप स्ट्रेट जो नालो ॾेई छॾियो। तस्वीर समाजी वेबसाइट ते जारी करे छॾी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान जी मुलाक़ात। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में दिफ़ाई सहकार वधाइण वारियूं कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़। सऊदी अरब में शहरी ऐं इक़्तिसादी हदनि ते हमलनि बाबति बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। सऊदी दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान चयो आहे त मुलाक़ात दौरान मका दिफ़ाई मुआदे तहत थियल फ़ौजी सरहनि जी गॾजाणी जो बि जाइज़ो वरितो वियो। मका दिफ़ाई मुआदे खे अस्करी सहकार में तब्दील करण जो अज़म वरिजायो वियो।

सिंध खां सवाइ ॿिए कंहिं बि सूबे में औरतुनि खे मुफ़्त स्कूटी न पई ॾिनी वञे। औरतुनि लाइ पिंक स्कूटी स्कीम बिलावल भुट्टो ज़रदारी शुरू कराई। मीरपुर ख़ासि में मुफ़्त पिंक स्कूटीज़ विरिहाइण वारी तक़रीब खे ख़िताब कंदे सिंध जे सीनियर वज़ीर सरजी नाम अहमद चयो आहे त हाणे हुनखे हारी कार्ड ऐं पोइ हुनखे लेबर कार्ड ॾिनो पियो वञे। सूबे में 50,000 औरतुनि ड्राइविंग लाइसेंस लाइ अप्लाई कयो आहे। जेकॾहिं पिंक स्कूटी मर्द हलाईंदो त स्कूटी ज़ब्त कई वेंदी। वज़ीर आज़म मुलाकात में पेट्रोलियम मिलेवी वारो मसलो हल न कयो त ॿीहर लांग मार्च कयो वेंदो। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त एहतजाज पीटीआई जो हक़ आहे। केपी में गवर्नर राज वारनि वफ़ाउनि जी मज़म्मत कयूं था। जमायत इस्लामी जल्द मुख़्तलिफ़ शहरनि में जलसा बि कंदी। पाक बहरिया जे अरबी समुंड में कार्रवाई वॾे मक़दार में मंशात पकड़े वरिती। ISPR मूजिबि पाक नेवी जे जहाज़नि हुननि यरमोक जे अरबी समुंड में कार्रवाई दौरान 2800 किलो खां वधीक मंशात पकड़े वई। समुंड में शकी ॿेड़े जे तलाशी दौरान गुजन खाननि में लिकायल मंशात मिली। नेवल चीफ पारां अमले जी आला पेशवरान सलाहियतुनि जी साराह पकड़ियल मंशात जे आलमी मार्केट में मालियत अटकल 75 करोड़ रुपया आहे।

0: ऐं के तमामु बुरे तरीक़े सां हिन ते तशदुद कयऊं ऐं हिननि जा पंज पिस्टल जा फायर कया विया आहिनि। माना हिकिड़ो सम्झो बेरहमीअ सां त माण्हू कंहिं जानवर सां मदद करे सघे,
1: असांजी का दुश्मनी कंहिंसां बि न आहे, असां न ई किथे शिक आहे। हाणे असांखे इहा ख़बर नथी पवे त आया हिनखे मर्डर करण जो पोइ कहिड़ो हथे छाजे करे मारियो वियो आहे।
2: राति जो 10 बजे चेकर गाॾी जे सिस्टम खां ई हुनखे फाइंड आउट करे वियो पर्सनली असांजे पंहिंजे रिसोर्स ते। उन खां पोइ उन कार में डेड बॉडी मिली, यानी FIR त थी चुकी आहे। हाणे पुलिस पंहिंजी पेशकश ॾेखारींदी आहे, असीं जस्टिस घुरूं था, जेको असांजो राइट बि आहे।
3: हैदराबाद में हिंदू वापारी नरेश कुमार जी पैसन जी ॾेती लेती तां कतल थियण जो इंकशाफ़ पुलिस नरेश कुमार जे मोबाइल डेटा जी मदद सां जवाबदारनि ताईं पहुची वई। नरेश कुमार जे तॾहिं तां संदसि बरादरी जे हिकु नौजवान खे गिरफ़्तार करण बि संदसि निशानदेही ते टंडोलयार में छापा। कतल जे इल्ज़ाम हेठि वधीक ॿ जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस जे मूजिबि गिरफ़्तार जवाबदार नरेश कुमार खे पैसनि जी ॾेती लेती तां कतल कयो वियो। नरेश कुमार 35 लख रुपया वसूल करण लाइ टंडोलयार वियो, जिथे जवाबदारनि खे तशदुद ब॒ चेल में 5 गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो ऐं लाश कार में छॾे फरार थी विया हुआ। पुलिस जो चवण आहे जवाबदारनि अञा ताईं ॾोह जो एतिराफ़ न आहे कयो, पर केस घणे भाङे हल थी वियो आहे।

सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जे मुबैन लताड़ ऐं बेकादगियुनि ख़िलाफ़ एतिराज़ कंदड़ शागिर्दनि पारां कराची ॾांहुं लांग मार्च जो ऐलान। सिंध स्टूडेंट्स एक्शन 9 अक्टूबर ते हैदराबाद खां कराची ताईं पियादल लांग मार्च करण जो ऐलान करे छॾियो। अॻवाण चयो आहे त लांग मार्च हटे वारे रस्ते तां थींदो, कराची पहुचंदो। CM हाउस आॾो एतिराज कयो वेंदो। लांग मार्च सां हैदराबाद में क़ाइम एतिराज जे कैंप आरज़ी तौर ख़तम कई वेंदी। घोड़ाबारी वेझो वर शहर में हथियारबंदनि फायरिंग करे काठ जे वापारी खे क़तलु करे छॾियो। मोटरसाइकिल ते सवार हथियारबंद विच बाज़ार में वापारी शाह चांडियो खे क़तलु करण बाद फरार थी विया।

0: पानी जो है इन वक्त धरती में भी कोने को पानी अड़ो को मना पुराना जो जखी सुखो नंढमन हों कुदरती पानी जमा थो तो उन जानवर मानू उन पासे में वरी असर खूह खोटी आए
1: जी जी
0: तो उन माप में धप एडी होंगी जो पर मजबूरी है
2: वो नजर अथानी कान गरीब रंग न जाओ न मो बाकी जी चंगा।

0: सिंध सूबे जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में अरबे रुपया बजट हुअण बावजूद मकान इदारनि जी कारगर्दगी सवाल निशान बणियल। मले ज़िले जे टिनि टाउननि टी यूनियन कमेटियुनि ऐं कराची मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन इंतिज़ामिया जा अरबे रुपया आवाम खे को बि लाभ न ॾेई रही सघिया। इब्राहिम हैदरी गडाप ऐं मलिर टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतिज़ामिया जे सालाना 12 अरब रुपियनि खां वधीक बजट हुजण जे बावजूद शहरी ऐं ॿारनि जा इलाइक़ा खंडरात जो मंज़र पेश करण लॻा। मकान इदारनि जे नाले सबब शहरी पीअण जे पाणी रोडनि रस्तनि खां महरूम, सफ़ाई जो निज़ाम तबाह, खुलियल गटर इंसानी ज़िंदगियूं गड़काए रहिया आहिनि। शहरियूं चवण आहे त टाउन ऐं यूनियन कमेटियुनि में ग्रेड 1 खां 17 ग्रेड ताईं सवे मुलाज़िम बजट ते ॿार आहिनि, जेके मिली भगत करे करोड़ रुपया खाई वञनि था, पर इलाइक़नि ते टको ख़र्च नथो कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
3: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: घर घर

के डेरा इस्माइल खान में चेक पोस्ट भरसा आबगादी हमलो, 6 पुलिस अहलकार समेत 12 जना शहीद। 25 का वधिक जख्मी आबगादी बम्बार बारूद सा भरल गाड़ी के दरांसदा में अमून मेला चेक पोस्ट सा टकरायो। शहीदन में 6 पुलिस अहलकार, 1 कस्टम ऑफिसर बोर तू 1 बार भी शामिल। जख्मियों के खड़ी वेंदड़ एम्बुलेंस ते भी फायरिंग। 2 रजाकार शहीद, 3 जख्मी सिक्योरिटी फोर्स इलाके में पहुंची, सर्च ऑपरेशन शुरू कर छो। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, गरु वजीर मोहसन नकवी बेन पना चेक पोस्ट ते हमले की मजम्मत। इंसानी जान के नुकसान ते दुख जो इजहार। दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जारी रखने वाले अजम जो वर्जाओ।

0: लॉन्ग मार्च खां पोइ ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि त पहिरें छो नथियूं कयूं वञनि। केपी जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी वफ़ाक़ी हुकूमत खे ॻाल्हियुनि जी आस करे छॾी। पिशावर में सीनियर साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे सुहेल आफ़रीदी चयो त लॉन्ग मार्च में अञा 7 ॾींहं आहिनि, पोइ बि ॻाल्हियूं थियणियूं आहिनि त हाणे छो नथियूं कयूं वञनि। ॻाल्हियुनि लाइ पहिरें बि तयारु हुआसीं, हाणे बि आहियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत असांजी एस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हि थियण न ॾेई रही आहे। मुल्क में हिकु शख़्स जी ॻाल्हि हले थी जंहिंजो नुमाइंदो मोहसिन नक़वी आहे। दड़े वेझो बेलो रोड ते चारण गोलाई वटि हथियारबंदनि जी गाॾी ते फायरिंग, 15 वीरनि जी निगरी मारिजी वई। फायरिंग सबबि कतुल थियल निगरी जी सुञाणप मुर्क महमूद तौरु कई वई। मड़ रूरल हेल्थ सेंटर दड़ो पहुचायो वियो। वाके जे इतलाह ते शहरियुनि जो वॾो अंगु पिणु पहुची वियो। शहर में बदमनी ते गणती जो इज़हार, जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो। सिंध सूबे जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में अरबे रुपया बजट हुअण बावजूदि मकानी इदारनि जे कारगर्दी सुवाल या निशान बणियल। मलेर ज़िले जे टिन टाउननि, टी यूनियन कमेटियुनि ऐं कराची मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन इंतज़ामिया जा अरबे रुपया अवाम खे को बि लाभ न ॾेई सघिया। इब्राहिम हैदरी गडा ऐं मलेर टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतज़ामिया जे सालाना 12 अरब रुपियनि खां वधीक बजट हुजण जे बावजूदि शहरी ऐं ॿारनि जा इलाइक़ा खंडरात जो मंज़र पेश करण लॻा। मकानी इदारनि जे नाले सबबि शहरी पीअण जे पाणी, रोडनि रस्तनि खां महरूम, सफ़ाई जो निज़ाम तबाह, खुलियल गटर इंसानी ज़िंदगियूं गड़काए रहिया आहिनि। शहरियुनि जो चवणु आहे त टाउननि ऐं यूनियन कमेटियुनि में ग्रेड 1 खां 17 ग्रेड ताईं सभई मुलाज़िम बजट ते ॿार आहिनि, जेके मिली भगत करे करोड़ रुपया खाई वञनि था, पर इलाइक़नि ते टको ख़र्च नथो कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Zindagi guzario etmad sa Quran ke samji budhanda raho Dr. Farhat Hashmi jo program Taleemul Quran rozano subhu 9 lagi 5 minutan te sirf GFM 88 network te
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: नयन वीडियोस लाए सब्सक्राइब पियो पेंजी टीवी ए बेल आइकन के दबाण न विसारिंदा।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: डाडू सुठो
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आपने मुझे बताना है जनाब कि आपने बताना है कि उस शहर का नाम जिसको उल्टा लिखने पर एक परिंदे का नाम भी बन जाए। अब आप जाइए और पता लगाइए, मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा नाम है, एक शहर का नाम ऐसा बताना है कि जिसको उल्टा लिखने पर एक शहर का नाम बच जाए। तो एक परिंदे का नाम बन, मतलब एक शहर का नाम आप मुझे बता रहे हो, उसको उल्टा लिखोगे तो वो एक परिंदे का नाम भी बन जाए। तो जाइए पता लगाइए और मुझे बताइए, बल्कि और चीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, चीटिंग करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, अगर आप अपने दिल से बताएंगे तो आपको जवाब सामने ही आपके रखा हुआ होगा। तो जाइए और मुझे पता लगाइए, और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अपने एक पसंदीदा सॉन्ग का नाम मुझे ज़रूर बता देना, ताकि जब आपका जवाब मैं देखूँ तो अगर आपका जवाब ठीक होगा तो मैं ऑटोमेटिकली आपको जो सॉन्ग है वो प्ले कर दूंगी, ताकि आप लोग समझ जाइएगा कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कर रही हूँ मैं बहुत बहुत बहुत बहुत आपका इंतजार। अच्छा देखते हैं अभी यहाँ पर कि हमारे साथ और कौन मौजूद हैं।

0: है तो जब आप बताएंगे तो ही तो हम आगे सॉन्ग सुन पाएंगे ना। तो जी यहाँ पर मेरा तो इंतजार यही है, बाकी तो अभी बहुत मतलब आधा घंटा हमारा गुजर गया है और रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ डेढ़ घंटा बचा है। डेढ़ घंटे के अंदर भी समझो सिर्फ एक घंटा बचा है, क्योंकि ब्रेक्स होते हैं, न्यूज ब्रेक्स होते हैं, शॉर्ट कमर्शियल्स होते हैं, तो ये चले जाते हैं तो हमारे पास टाइम कम हो जाता है। तो जी आपने क्या करना, जाके मुझे टाइमली मुझे बताना है, ताकि अगर आप मेरा सेगमेंट का विन करना चाहते हैं, जब विनर बनेंगे तो फिर मैं आपको जाहिर सी बात इनाम भी लूंगी और सॉन्ग भी प्ले होगा, तो बहुत खुशी की बात है। ये तो आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी, कि मेरे नए लिसनर्स आज जो विन करने वाले हैं या जो मेरे पुराने लिसनर्स हैं वो विन करेंगे। तो देखते हैं, ये तो रेस होती है, देखते हैं कि कौन जीतता है। जी सवाल मैं अपना रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ। लेकिन खैर मुझे बहुत खुशी हुई मिस्टर अहमद कि आपने भले थोड़ी देर से किया रिप्लाई मैसेज, लेकिन बहुत अच्छा मतलब अच्छा लगा कि आपने मुझे कॉमेंट किया।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: चमकदार रंग सां पंहिंजो अंदाज बणायो वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या की खास मौके जी तयारी हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्च क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीम कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ जी एफएम 88.8
1: और फुजूर बस कहीं पीछे रह जाता है तो आइए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: This program is brought to you by
3: Bank Islam ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग
0: वेल्थ जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात जी एफ एम का हेल्थ अवेयरनेस शो होस्ट आगा जब्बार के साथ जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुँचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर स्पॉन्सरशिप के आज ही राबता करें आगा जब्बार 03009312700
4: 44 सालों जो तजुर्बो हजारे मरीजन जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद 44 सालों जी वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज जोड़न जो सूर मैदे में जलन गैस बदहजमी तेजाबियत गुर्दन जी पथरी बवासीर बे औलादी वारन जो किरण गंजपण फालिज खारिश ऐं बियन मुख़्तलिफ़ सेहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसिर इलाज फराहम करे रहिया आहिनि आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर पुलिस हेडक्वार्टर चौक पुलिस लाइन सखर टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबुह 10 खां शाम 5 ताईं अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 03-26-22-00-440
0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 7:30 ते सिर्फ़ GFM 88

कहा था कि हम लोग छोटे से 6 किलोमीटर पेट की तरफ जाएंगे, वैसे ही वापस आ चुके हैं हम लोग, लेकिन आप लोग भी मेरे साथ मौजूद होंगे। तो जी, जो पहला सवाल था, सवाल मेरा ये था कि आप लोगों ने मुझे बताना था कि भाई उस शेर का नाम आपने मुझे बताना था जिसको उल्टा लिखने पर एक परिंदे का नाम बदले, तो क्या आपने अभी तक सोचा? आप लोग मुझे जवाब दें भाई, ताकि अगर आप मुझे जवाब देंगे तो ही तो मैं आगे चलूंगी भाई। अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो मैं अगर अपने सॉन्ग प्ले करूंगी, फिर लास्ट में मुझे बता दूंगी जी मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली उस टाइम। तो देखते हैं, अभी हमारे कमेंट आना शुरू हो गए हैं। कमेंट्स मशहूर हमें करते हुए कहते हैं कि आज सनाती सवाल का जवाब है सिटी का नाम। ओके ओके ओके, और कहते हैं ओके सवाल ठीक हो तो फैज़ अली की आवाज़ का सॉन्ग आप सुनाइएगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, हम लोग आपको सॉन्ग तो वैसे ही प्ले करते हैं। आपको बताइए सिंगर का आज हमने सॉन्ग सुबह सुबह प्ले नहीं किया तो सुबह हमारी लग ही नहीं रही। वैसे हकीकत बताऊँ सॉन्ग हमने बहुत अच्छा प्ले किया था आते साथ, लेकिन सुबह सुबह जो आदत है वो नहीं हुई पूरी। और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ कहते हैं कि सना खान में मसान रोड रोडी से किराना स्टोर चलाता हूँ। अच्छा, किराना स्टोर चलाते हैं जी। अच्छा अच्छा, तो किराना स्टोर आप चलाते हैं मासन रोड भी, मुझे पता नहीं है कहाँ पर है, लेकिन खैर है और खुशी हुई कि आपने मुझे ज्वाइन किया वहाँ से। तो ऐसे ही आप लोग मुझे ज्वाइन करते रहना है हर इतवार, ओनली ओनली ओनली ओनली ओनली ओनली ऑन संडे सुबह 11:00 से 1:00 तक रहता है मेरा और आपके साथ पूरे 2 घंटे के लिए। तो आपने आज भी ऐसे ही करना है जी, मेरे साथ हैं तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग ऐसा मतलब जो है आज क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि आई थिंक वो सिटी है, ओके नाम बताते हैं लिखो तो, और उल्टा लिखो तो ओके जी जेपल। जी जेपल कैसे हैं आप? और बहुत टाइम बाद आपने ज्वाइन किया है। और साथ में कहते हैं सेपल कराची से, हेलो आरजे, हैप्पी वाली मॉर्निंग, नाइस डे, सुपर संडे, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। थोड़े दिन में होने वाला था गुड इवनिंग, और उससे पहले आपने गुड आफ्टरनून सॉरी, और आपने उससे पहले गुड मॉर्निंग कहते हैं, शुक्र है शुक्र है। और जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएँगे जेपल आप कैसे हैं? कराची से आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छे और बहुत खुशी हुई कि आपने ज्वाइन किया कि, और ऐसे आई होप कि आप मुझे हर इतवार ऐसे ही ज्वाइन करते रहेंगे ओनली ऑन संडे, और जैसा कि रहता है मेरा आपको साथ पूरे पूरे 2 घंटे के लिए सुबह 11:00 से 1:00 तक। तो ऐसे ही आपको भी जो है सुपर वाला गुड मॉर्निंग है संडे पे। तो जी नाश्ता शाश्ता कर लिया आपने, चाय शाही पी ली है अकेले के नहीं पी है आज आपने? क्या सब प्लेन है, कराची का मौसम कैसा है मुझे जरूर बताएं। कराची में ठंडी हवाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही, सर्दी आई है कि नहीं आई, गर्मी गई है कि नहीं गई है मुझे जरूर बताएं, या दोनों आपस में टकरा चुके हैं ये भी जरूर बताइएगा। और साथ में आपने जो मुझे जवाब दिया है ठीक है, और अगर आप सॉन्ग का नाम बता देंगे तो वेल इंक्लूड हो जाएगा सॉन्ग का नाम, आप मुझे बता दें चप्पल। अगर आपका जवाब ठीक होगा, आपका सॉन्ग चल जाएगा, तो आप समझ जाइएगा क्या जी आप जीत गए हैं। और मशहूर अहमद आप भी आपने बताया ओके जी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हम लोग यहाँ पर एक और सॉन्ग प्ले करेंगे जो कि वो भी मेरी पसंद पर ही है वो सॉन्ग, तो उस सॉन्ग को करते हैं।

सॉन्ग कर दिया मैंने प्ले और सुन सुनते साथ में एंजॉय करते हैं सॉन्ग को। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग यार। तो उससे भी बेस्ट सॉन्ग तो बहुत ही आसान है।

0: जी वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सुन रहे थे इश्क है ड्रामा कॉस्टी सॉन्ग, और ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो मैंने सोचा यार क्यों मैं अकेले सुनूँ, हमेशा आपको पता है कि कोई भी चीज़ मैं अकेले नहीं सुन रही थी, हमेशा आपको कैसा सुन रही थी। तो मैंने कहा आज भी क्यों मैं अकेले कोई सॉन्ग सुनूँ, तो हमेशा की तरह आज मैंने आपको कैसा सुना है। तो यहाँ पर टाइम हमारे पास होता है एक छोटे से न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाने का। जैसे न्यूज़ ब्रेक पर भी जाना जरूरी है यार, पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हाल चाल है क्या नहीं है। जैसे आप अपना तो बता नहीं रहे थे, तो दुनिया की तरफ हमें सुनी चाहिए ना न्यूज़ सुन के, तो हम लोग अभी जाएंगे न्यूज़ की तरफ। लेकिन घबराना नहीं है, परेशाना नहीं है। और आपने क्या करना है कि आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब सब तक सोच लेना है, और जब मैं वापस आऊँगा तो आपने मुझे जल्दी से कमेंट कर देना है, क्योंकि अगर आप लोगों को कमेंट नहीं करेंगे तो मैं अपने पसंदीदा सॉन्ग बता दूंगी और सॉन्ग का नाम भी चला दूंगी, और जिससे मुझे कमेंट किया उनको सॉन्ग प्ले कर दूंगी, और मैं अपना जवाब बता दूंगी सवाल का कि भाई इसका ये जवाब था। अगर आप लोग नहीं देंगे टाइम के जवाब तो कर रही हूँ मैं आप इंतजार। जी मेरा सवाल ये था कि आप लोगों ने जैसे कितना बताना है कि मनुष्य का नाम आप लोग सिर्फ बताना है कि जिसको उल्टा लिखने पर एक परिंदे का नाम बनता हो। इतना आसान सवाल नहीं है, सवाल है, और स्कूल में हम इसको पहले यहाँ बना के पूछा करते थे। तो ये तो बहुत आसान है, आप लोगों को याद भी होगा जी। तो यहाँ पर टाइम होता है वहाँ पर देख लो छोड़ कर मुझे ब्रेक जाने का और न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाने का। तो न्यूज़ सुनेंगे, वापस आएंगे, वापस आगे करते हैं।
1: This project is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow, Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Sachal ki sar mast dharti.
3: Fatiye Mehran. Hat chup. Sindh ki ek aur pehchan.
4: 88 Network se juda.
5: GFM 88 Network.
2: Ab aap sunenge. GFM Network par.

अची पहुची वियो संदसि सदारत हेठ पीपल्स पार्टी जे इजलास जल्द थियण जे इम्कान। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं बलोचिस्तान जो वॾो वज़ीर सरफराज बुख्ती बि कराची पहुतल। इजलास में सियासी मामलनि समेत नवनि सूबनि जे मामलनि ते अहम फ़ैसलनि जे

करण जो इंतिशाह पुलिस पारां मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार करण जी दावा पुलिस ज़रियनि मूजिबि नरेश कुमार जे क़तल खे सॼे ॿिनि मुख्य जवाबदारनि खे टंडोल अयार मां गिरफ़्तार कयो वियो आहे। ज़रियनि मूजिबि मक़तूल खे कर्ज़ु वापसि ॾियण जे बहाने घुराए क़तल कयो वियो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में दरियाहनि जे आलमी ॾिहाड़े ते सिंधुअ जे

0: सचल की सरमस्त धरती
1: फातिमा मेहरा सिंध की एक और पहचान
0: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज। अगर खूबसूरती खपे त आर्ट्स अपनायो, आर्ट्स ब्यूटी क्रीम एलोवेरा एवोकाडो अवहां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ 10 दिन में डार्क स्पॉट्स एक्ने ए स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग आईडी शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक ए निखार जो बेहतरीन इंतखाब आर्ट्स ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।
2: गाड़ी खरीद करना जो इरादो आहे
1: या पंजी पुरानी गाड़ी विकणन चाहियो था तपोई अचो बालाज मोटर्स मोरो ते
2: जिते तवा के मिलन थियो टोयोटा सुजुकी होंडा
1: किया स्पोर्टेज आई बियन कंपनी जो मुख्तलिफ गाड़ियों जिनमें जापानी इंपोर्टेड आई हाइब्रिड गाड़ियों पण शामिल आहन
2: तवा जी पसंद जरूरत आई बजट मुताबिक गाड़ी जी चूंड में बेहतरीन सहकार
1: बालाज मोटर्स मोरो ते हर किस्म जे गाड़ियों जी खरीद आई विकणो जी सहूलत मौजूद है मुनासिब अघन और बेहतरीन डील सा
2: इनहा अलावा पूरे पाकिस्तान में आवाज जिते भी हो जो बैजी गाड़ी बुक कराए सकू था
1: बाला

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

तो जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग मलिका सॉन्ग फैजल की आवाज में. सॉन्ग कोई सा भी हम सुनते हैं, इनका उर्दू वाला सॉन्ग सुनते हैं, संदेश स्पीकिंग सॉन्ग सुनते हैं, बहुत ही कोई लाजवाब सॉन्ग होते हैं. मतलब अच्छा लगता है, सुबह का आगाज लगता है अभी हुई है सुबह हमारी, तो यकीन आप लोगों को भी ऐसे ही लगता होगा. मुझे तो इनके सॉन्ग पसंद हैं, तो इसलिए हमने जो है किए थे. और इसके अलावा जो है बहुत सारे और सॉन्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी मैं चाहूँगी यार यहाँ पर कि अभी हम लोग

0: कोर्सेस पिण थींदा आहिनि। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो 07115635642 ऐं 03108166111।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

जी वेलकम एवरीवन अगेन. जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ब्रेक पे गए, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर टाइम होता है हमारे पास स्टार्टर बाय करने वाला, क्योंकि बहुत टाइम कम रह गया है और बातें तो जो हैं वो खत्म होती हैं. अच्छा जी, देख लेते हैं हमारे साथ यहाँ पर कौन मौजूद है. हमारे साथ मौजूद है नज़ीर, कुछ कहते हैं कि जिंदगी का असल मकसद कायनात का असल शऊर हासिल करके है और बेसहारा इंसानों की जिंदगी में हौसला पैदा करना और मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है. और सोबतपुर बलोचिस्तान से नज़ीर खुसो हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम नज़ीर खुसो, कैसे हैं आप? और बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ज्वाइन किया है. ऐसे आप मुझे ज्वाइन करते रहा करें ऑन ऑन संडे जैसे कि रहता है आप और मेरे साथ. और यहाँ पर टाइम आपको पता है कि होने वाला है हमारे पास ख़त्म और यहाँ पर एक सॉन्ग हमारे पास रहता है लास्ट में, जो कि शमन और मुरारी की आवाज़ में हमें एक फरमाइशी सॉन्ग था जो हम प्ले करेंगे लास्ट में चलते जाते. और इसके अलावा मैं बताऊँगी जो आप लोगों ने ज्वाइन किया है और आप लोग मेरे साथ मौजूद होते हैं, बहुत अच्छा लगता है. ऐसी बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं. आपके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं. कहते हैं हबीबुल्ला ते वो सॉन्ग बद रहे जो तुम, हम तुम्हारी राह देखेंगे. अच्छा अच्छा, हम तुम्हारी राह देखेंगे सर, हम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, लेकिन आपको बहुत देर हो गई है हमारे शो में आते आते. तो जनाब आप कहाँ थे? आपको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था कि आप हमारे शो में आते तो हम जल्दी हम आपको सॉन्ग प्ले करते. खैर कोई बात नहीं, हम अगली दफ़ा ये सॉन्ग ज़रूर प्ले करेंगे हबीबुल्ला और तुम चले आओ पहाड़ों की कसम. लेकिन आपको भी कसम है कि नेक्स्ट संडे आपने क्या करना है, मुझे ज्वाइन करना है और बिल्कुल टाइम भी ज्वाइन करना है. अगर आप लोग मुझे देर से ज्वाइन करते हैं तो जी यहाँ पर आपको पता है कि वो हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है. तो यहाँ पर अगर टाइम हमारे पास हुआ तो हम ज़रूर इंशाल्लाह भी प्ले कर लेंगे. तो यहाँ पर चले एक सॉन्ग हम प्ले करते हैं, उसके बाद इनका सॉन्ग भी हम आज प्ले करते हैं. कोई बात नहीं, आपने मुझे आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा. तो करते हैं आपका सॉन्ग भी आज प्ले और ये वाला एक सॉन्ग प्ले करते हैं, सुनते हैं इस सॉन्ग को भी.

0: तो जी यहाँ पर हम लोग अभी एक और सॉन्ग प्ले करेंगे यहाँ पर, और इसके अलावा ये बहुत अच्छा सॉन्ग हम सुन रहे थे शमन अरीम लाली की आवाज में, और आप लोगों ने भी मेरे साथ ये सॉन्ग एंजॉय किया होगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, कहते हैं अब्दुल अली ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू सिस्टर सना, थैंक यू सो मच, और थैंक यू आपका आपने मुझे ज्वाइन किया। ऐसे ही आप सारे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगले इतवार को मेरे साथ टाइम मुझे ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ पर टाइम होता है हमारे साथ अल्लाह हाफिज़ करने का। तो यहाँ पर करते हैं जी अल्लाह हाफिज़, एक सॉन्ग को लास्ट में प्ले करते जाएंगे, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, जैसा कि हमें फरमाइश आई थी अभी हबीबुल्लाह की तरफ से, तो और लाड़कानों से वो मुझे मैसेज करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे ज्वाइन किया है हबीबुल्लाह। ऐसे आपने नेक्स्ट संडे आपने क्या करना, मुझे टाइम ज्वाइन करना है और मेरे सवाल को सुनना है, मेरे सवाल का जवाब भी देना है, और अपने साथ में मुझे ज्वाइन करने के साथ साथ मुझे अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी बता देना है, जैसे आज बताया था, तो अगर मैं वो ठीक होगा तो मैं प्ले कर दूंगी, वैसे ही मैं आपको प्ले करूंगी, आप मेरे जो है न्यू लिसनर है तो उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मैं आपको सॉन्ग प्ले करूंगी, आप मुझे जरूर अपने पसंद का सॉन्ग का नाम बताना है। अगले इतवार करूंगी मैं आपका इंतजार, और मिलते हैं अभी अगले सेगमेंट में अगले इतवार को। जब तक रखना है आप सबने अपना बहुत सारा ख्याल, जब तक अल्लाह हाफिज है, और इस सॉन्ग को कर दिया है मैंने प्ले, इस सॉन्ग को करते हैं साथ में एंजॉय, अल्लाह हाफिज।
1: बजे मैं रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने, और सुबह 10 बजे टूटी

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: हुकूमतूं एहतजाज कंदड़ सभु हाराए रहिया आहिनि. धुरियूं अनाज ज़िद ऐं धड़ाबंदियुनि खां मथां ई थी करे ॻाल्हियूं कनि. तव्हां मां केरु पए फाते न थींदो. अॻभराई सदाई रियासत कंदी आहे, रियासत पारां अॻभराई कई वञे. हिक ॿिए जी इज़त नफ़्स खे भोरा भोरा करणु कमु ज़र्फ़ी आहे. हीउ को फ़ख्रु जोॻो कमु न आहे. नून लीग जे सीनियर अॻवान सद रफ़ीक जो बयानु. सद रफ़ीक चयो त महांगाई, बेरोज़गारी, नाइंसाफ़ी ऐं दहशतगर्दी जी बाहि में सड़ियल पाकिस्तान चुंगी रहियो आहे. पाकिस्तान जो सॾु ॿुधो. सिविल सोसाइटी साहिब दिल ऐं दर्द वंद माण्हुनि सुजाॻ थियनि. जेके जिते आहिनि उते आवाज़ बुलंद करे

मोहसिन नकवी चूंडियल अवामी नुमाइंदो ऐं पार्लियामानी निज़ाम जो हिसो रहियो हुजे हा त उहो कंहिंसे मालूम हुजे हा त असेंबली मेंबर्स खे हासिल पार्लियामानी इस्तेकाक नई ऐजाद न पर वॾे अर्से खां पार्लियामानी रवायतुनि क़ौमी ऐं सूबाई कानून जो हिसो आहिनि। के पी जे असेंबली जे स्पीकर बाबर सलीम सवाती जो मोहसिन नकवी जे बयान ते रदअमल। स्पीकर बाबर सलीम सवाती चयो त फ़ौजदारी इल्ज़ाम में सूबाई असेंबली मेंबर जी गिरफ़्तारी खां अॻु स्पीकर खां इजाज़त वठण खे बरपख़्तूनख्वा जी नई ऐजाद न आहे। पार्लियामानी इस्तेकाक कंहिं मेंबर खे कानून खां मथाउ नथी बणाए। हर मेंबर जांच केस ऐं अदालती कार्रवाई जो मुंहुं ॾींदो। स्पीकर जो किरदारु रुॻो उहो यकीनी बणाइणु आहे त गिरफ़्तारी सियासी इंतकाम या असेंबली जी कार्रवाई में रुकावट लाइ त न आहे। स्पीकर बाबर सलीम सवाती मोहसिन नकवी खे जवाबु ॾींदे चयो त अवां राति जी ऊंदहि में चूंड जो कानून मंज़ूरु कयो त उहो कानून आहे। अवां पार्लियामेंटेरियन खे अॻुवा रिश्वत ऐं फ्लोर क्रॉसिंग जे ज़रिए कानून मंज़ूरु करायो त उहो कानून आहे। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा असेंबली में हुकूमत ऐं अपोज़िशन जमायतूं इतफ़ाक़ राय सां कानून मंज़ूरु करे त छा उहो कानून नाहे। मोहसिन नकवी थोरो सोचे त कहिड़ी शइ खे कंहिंसां भेटाए रहियो आहे। मोहसिन नकवी असेंबली मेंबर जी गिरफ़्तारी खां अॻु स्पीकर जी इजाज़त वठण वारे ख़त ते तनक़ीद कंदे चयो त कानून अॻियां बराबरी जो हिकु हीउ अजीब नमूनो आहे। छा रियासत मदीना ईअं हूंदी आहे?

तहरीक इंसाफ तरफ़ा लॉन्ग मार्च मुलतवी करण बावजूद इस्लामाबाद के रेड जोन तरफ कंटेनर्स के तादाद में वाद शहर अंदर दाखिल थींदड़ बाहर निकरण वाले रस्तन ता कंटेनर्स के हटाए किनारन रखे वो अटक पुल रुकावटू हटाई व्यू जी टी रोड से चंद ढीन बाद ट्रैफिक बहाल पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे M1 तां रुकावटू हटाने जो सिलसिलो जारी पीटीआई जो लॉन्ग मार्च रोकने लाए मोटरवे से वारी जो बोरियों लोही सिकुन जो शीटू ए कंटेनर रखा वह हुआ टैक्सला में पंजाब इंदड़ ट्रैफिक मामूल से अची वही कंटेनर्स हटाए रोड से किनारन से रखा वह मियावली में सी पैक रोड अजा तई बंद डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजंदा में धमाके दौरान शहीद थी वेलन जो अंग वधी तेरह थी वो टीह का वधी का जख्मी शहीद में छह पुलिस अहलकार ब कस्टम अहलकार ब रेस्क्यू अहलकार ब औरतूँ एक बिन वरन जो बाड़ो भी शामिल दहशतगर्दन बारूद से भरल गाड़ी पुलिस की चेकपोस्ट से टकराए छी जख्मियों के अस्पताल खड़ी वेंदड़ एम्बुलेंस के भी निशानो बनाए वो सदर आसिफ अली जरदारी ए वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा दहशतगर्द हमले की सख्त लफ्जन में मजबत धड़ो में हथियारबंद फौरन था कतल थियल नारी के वारसन जो लाश रखी धड़ो सियासी समाजी अगुण ने शहरन की वरी अंग में शिरकत पुलिस खिलाफ नारेबाजी वारसन जो चवण है ठटे का वापस धड़ो वेन में अची रहा हुआ त धड़ो बेलो रोड से हथियारबंदन फौरन रोकने जो इशारो किया गाड़ी न बिहण से जवाबदार सीधी फायरिंग कई गोलियों लगने सबब 17 वरन की मुर्कद ही रज मेमुन थले से दम डनो ड्राइवर यार मोहम्मद सोलंगी जख्मी थी पो जवाबदार गिरफ्तार कर इंसाफ फराम करने जो मुतालबो हैदराबाद में व्यापारी नरेश कुमार के पैसों की रेती लेती था कतल करने जो निक्षाप पुलिस बिन जवाबदार चंबड़ वासी वकास मुगल ए टंडे जाम वासी असद अली धमाश के गिरफ्तार कर वरतो पुलिस जरन मूजिब नरेश कुमार सा वकास मुगल जो मुबैना तुर कणक ए बेन जिन्सन जो गडल कारोबार हो नरेश कुमार जहा 60 लाख रुपया वकास डा रहल हुआ पैसों की घुरता नाराज थी वकास दोस्त असद अली धमाश से गड़ी कैस कतल कर मनसूबो जोड़ो वकास पैसा देने के बहाने नरेश कुमार के पान वट घुरा है कैसे टंडो लहर वी वो पुलिस जरन मूजिब टंडो लहर के वेझो नरेश कुमार के कार में गोली हणी कतल किया वो जवाबदार कार वापस हैदराबाद छे वह जी पुलिस के गुमराह कर सकन ऐं सखर में जज ते हमले जो छहनि औरतुनि समेत हिकु ई खानदान जे 9 ॼणनि ते दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाख़िल हिकु औरत समेत 3 ॼणा गिरफ़्तार सी सेक्शन थाणे ते सरकार पारां SHO इमरान भयो जी फरियाद ते दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाख़िल कयो वियो मकमूर संदसि भाउ गोसबख़्श ज़ाल फातिमा पुटनि इब्राहिम असद धीअर आमना सना ज़रियत मुस्कान ऐं ज़रीना ज़ाल ग़ुलाम नबी सुमरो जवाबदार तौरु नामज़द ज़रन मूजिबि पुलिस गोसबख़्श सुमरो असद सुमरो ऐं संदसि भेण मेक सुमरो खे गिरफ़्तार करे वरितो FIR जे मतन में ॼाणायो वियो आहे त जवाबदार औरतुनि ऐं मर्दनि हमसलाह ते मनसूबो ठाहे हथियारनि सां सेशन जज जावेद मीराणी जी गाॾी रोकी खेसि यरगमल पढ़ाए भॼंदड़ा कई

0: कमजोर, बेजान और टूटने लगे हैं? अब हल है मोहेयर शैम्पू बाय सिग्नेचर ब्यूटे। 90% कुदरती जड़ी बूटियों और अज्जा से तैयार करता सल्फेट फ्री फॉर्मूला जो बालों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये शैम्पू खुश्की कम करे, जड़ों की मरम्मत करे और कुदरती हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करे। मोहेयर शैम्पू सिग्नेचर ब्यूटे, वेयर ब्यूटी मीट्स नेचर। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

स्टार्टिंग में होने वाला है जी प्ले और कलाम सुनते ही कलाम के जैसे ही उस पार आप लोगों से मुलाकात होगी तो आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है और क्या कुछ है जो आज के प्रोग्राम में आप लोगों को पता चलने वाला है। तो आपका हमारा साथ पूरी पूरी 3 बजे तक का सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

जी आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मौजूद है जनाब, जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले हैं। अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को ये लग रहा है कि हम कहां से जाकर परचेज कर सकते हैं, हमारे एरिया में तो मिलते ही नहीं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे तो आप लोग जरा अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहां से आपको आराम से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। चलिए, अगर नहीं भी मिल रहे तो उसका हल भी आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे और कहां से जाकर आप जो है ना परचेज कर सकते हैं, किस तरह से आप अवेलेबल भी करा सकते हैं। बिल्कुल जी, सब बातें की जाएंगी, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ये बताया जाए कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक यानी कि सवाल क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम की अगर सवाल की बात की जाए तो आज मेरे आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सारे लोग मुझे बताइए वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। हाँ जी आज आप मुझे ये बताएंगे कि वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। बिल्कुल जी, आपने सही सुना। और अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, और नहीं भी पता है तब भी बनते जाइए, क्यों कोई मसला नहीं। आपको टॉपिक का जवाब आ रहा हो या नहीं आ रहा, लेकिन ये बात है कि भाई तुकाई मार लिया करें, टॉपिक को जरूर से फॉलो कर लिया करें। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 888-1। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM88.8 हमारा पेज है जनाब, आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। वहाँ पर आइए, आपको हमारे प्रोग्राम लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। बिल्कुल जी, तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए आप ही हमारे साथ मौजूद है, आप ही हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। बिल्कुल जनाब, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि मर्द को भी खूबसूरत बना देगा वो डर है ना, तो औरत हो या मर्द दोनों ही खूबसूरत हो जाएंगे। आप मुझे बताइए जल्दी से। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं जनाब, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जल्दी से नंबर्स को जरा नोट कर लेना है। तो नंबर में अभी आप लोगों को बताने लगी, नंबर को जल्दी से कोई ना नोट कर लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाएं, आपके हाँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मिलना चाहिए। तो जल्दी जल्दी से डायल कीजिए 0332738-4309। बड़ी 383-84-9 एंड योर नंबर आहे 03-12-50-25-907। बड़ी 312-25-970 ही नंबर साइन जेके डायल करे तां पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल कराए सको था। भले तां दुनिया जे केड़े भी कोने में मौजूद आयो, किथां भी तां सनो प्रोग्राम बुधो था, हर जगह ते तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल कराए सको था। बस इन नंबर से तां राबतो कयो और इनके बुधायो त बाबा फलानी जगह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन थी मिलेव, आई असा इस्तेमाल करण चाहियो था, बराए मेहरबानी असाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए वनो, हु अवेलेबल कराए छडी। तो वैसे भी तांके खबर आए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम चिकाए ही बाबा पोतल प्रोडक्ट आए, पोतल से मुराद या तो ही सिर्फ न सिर्फ तांके पूरे पाकिस्तान में मिलंदो, बाकी बाहर से मुल्कन में भी तांके डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली सके थी, छो तो ही तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट आए, आई तवां जे लाइ इस्तेमाल करण जा खोर सारा इन जे लाइ वजूहात मौजूद आए, तो तवां छो इस्तेमाल करना, छो तो बाबा एड़ो प्रोडक्ट हाँ मार्केट में अची वो है, तवां जे लाइ भी मार्केट में अवेलेबल आए, जेकी जेके माण्हू सोचन था बाबा असां महंगा महंगा प्रोडक्ट अफोर्ड नथा करे सघूं, असांजी जेब असांखे इजाज़त कोन ॾींदी आहे, तो तुम हाँ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो यूज करे सको था, जेको तुम्हें इस्तेमाल करना था फौरन बाद ही तुम्हें रियलाइज थी, तो बाबा वाकई ही अड़ा प्रोडक्ट है जेकी असा हमेशा का इस्तेमाल करण चाहूं पाया, असा के खबर नहीं कोई गाइड न पो करे या असा के कोई बुधाए कोन पे, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी मार्केट में अवेलेबल है। चलो हाँ मां बुधा छो वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो परचेज कर, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज करण स्टार्ट कर, चाहे मर्द हजरात आयो चाहे खवातीन आयो।
बिल्कुल सुना, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे बताइए वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है, मर्द को भी खूबसूरत बनाता है, हाँ जी दोनों को खूबसूरत बनाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ नजीर कोसो भाई ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, बलूचिस्तान से आप हमें सुन रहे हैं। कहते हैं कि दर्द अपना हो तो खामोश रहो, क्योंकि दुनिया को दर्द बताने वाले अक्सर तमाशाई बढ़ा लेते हैं, हम दर्द नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फरवा हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। आपकी तबीयत कैसी है? होप यू आर फाइन एंड वेरी नाइस। जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक ठाक। और बरकत रमादानी जमाली बलोच हमें सुन रहे हैं। जी आप भी हमें बलोचिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और अबू हनीफ अल बलोची कहते हैं कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की है? मैंने तुमसे मिले बगैर तुमसे मोहब्बत की है, मैंने तुम्हें छुए बगैर तुमसे मोहब्बत की है, मैंने तुम्हें देखे बगैर तुमसे मोहब्बत की है। क्या बात है भाईजान, बहुत बढ़िया हो गया ये तो। फरवा गुल हमें सुन रही है, आप ही अर्ज किया है, हम तो आज भी आपको याद करते हैं, तुम भूल गए। अच्छा तुम भूल भी गए, ये कमाल है। हाँ जी वाकई बहुत बड़ा कमाल है। और कहती रिक्वेस्ट है जोड़ा आसमानंते ठंडायन बाय ममताज मौलाई डेडिकेटेड स्पेशली आप और तमाम लिसनर्स के नाम। चले मैं कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना सुनेंगे। और दिया हमारे साथ हैं, दिया क्या कहती है? दिया ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम डियर से सिद्रा मुस्कान, कैसी आप? उम्मीद की अपने नाम की तरह हंसती मुस्कुराती होंगी। जी जी। और कहती है कि हम भी आ गए आपके शो में, प्लीज प्ले निगत नखरा छुनवाकया डेडिकेटेड स्पेशली रिमशा उरूसा हिरा एंड डेविल। ओके ओके। अच्छा फहीम भाई हमें सुन रहे, कहते कि नजर जी नजर के नजर न लगे कोई सुठो भी हिन कदर न लगे, तोखे डिठो आहे हिन नजर सा या हुन नजर हिन ही हुन में थोड़ो मां कंफ्यूज थी वेंदी आहियां। कहते कि जे नजर सा तोखे नजर न लगे। अच्छा अच्छा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अलैहि सलाम। कहते अदा छाल आहिनि खुश आयो सफ़ा चाक स्लेट कल मस्ती डबी हाओ असां भी अची वियासीं प्रोग्राम ते लाजवाब आहे हमेशा जीअं अवां वांगे। थैंक यू सो मच प्यारा सोहणा भाउ। पोस्ट के लाइक और शेयर करती रहिएगा। अब्दुल गुलाम कैसर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं वेलकम जी, आपको भी वेलकम कहते हैं। रशीद खोसो भाई हमें सुन रहे हैं हैदराबाद से, आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, थैंक यू। मुख्तियार अली लाशारी हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं। और फरवा कहती हैं लाइक और शेयर कर दिया आपका प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। फहीम भाई आपने भी कर दिया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रजाक भाई हमारे साथ हैं, हली पोटो स्टाफ खान तमाम से प्रोग्राम उधो पाया, थैंक यू जी, थैंक यू। मोहम्मद राशिद अमान हमारे साथ हैं, सिस्टर सिद्रा मुस्कान खुश रहे आमीन, आपका प्रोग्राम आपके प्रोग्राम का इंतजार रहता है, बहुत शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बतें होती बस इस काबिल हमें समझ लेते हैं, वरना ना चीज इस काबिल का। ऐसे नारबानी कहती है अस्सलाम वालेकुम, मौलाना सलामत है, ओ माय फेवरेट आरसी मैडम मुस्कान।

0: 50 स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल करेंगे और खूबसूरत हो जाएंगे.
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स.
3: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची पसी है बन के मोहब्बत का साज. GAFM 88 की आवाज.
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
5: छा तव्हांजो ख़्वाब आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो. सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में हिन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि. 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर.
6: This program is brought to you by
7: Bank Islamini Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
8: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक. रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
9: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां. GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

ॿियो हाल अहिवाल देश कंप्यूटर क्रीम जो इस्तेमालु कयो। अञा ताईं कोन कयो अथव बाबा, वञो वञो।

अच्छा भी मैंने अभी देखा तो आपके जो पहले वाले मतलब पहले पहले वाले कमेंट्स है ना वो तकरीबन ही ऊपर चले गए हैं, तो मैं जरा देखती हूँ जितने भी मुझे यहाँ पर कमेंट नजर आ रहे हैं वो जरा रीड कर लेते हैं। और हिदायत अहमदानी हमारे साथ कहते हैं जवाब सोचिंग के बाद ये जवाब आया कि खुदा से ओके ओके ओके। और हजार बार कहते हैं कि वो डर है पर्दा जो औरत को खूबसूरत बनाता है, योर टॉपिक आंसर ओके वेरी नाइस। वहीं भाई आपने लिंक शेयर कर दी है ओके, मैं आपका गाना लगाती हूँ बस थोड़ा सा सब्र किया करे। और निदली हमारे साथ कहती है मैंने अभी एक वीडियो देखा उसमें था AI कुछ सालों के बाद इंसान मार देगा, अब ये क्या सच है लग तो रहा है। अच्छा वहीम भाई कहते हैं दादा क्या सर खाले जुड़ी जो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल जी चाचा को तो जरूर यूज करवाइए भाई। और अनवर भाई हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तबीयत सही आए न मुर्कन सा सजायल ये जिंदगी जो पंद खुशिन जो गुलाब पियो मुर्के सजो हंद दुआ आए तो हमेशा यही रहन आबाद कहीं खे भी न अचे कोई दिल ते बंद। सही वाह सही वाह। हजार भाई कहते हैं कि आज का सॉन्ग प्ले करना सिर्फ आज कोई अपनी पसंद का चलिए AI का सही सही सही मैं लगाती हूँ भाई। हजार भाई AI के गानों के जरा शौकीन हो चुके हैं। सही है भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के भी शौकीन हो जाएंगे। और तबीयत मेरी काफी बेहतर है आप बताएं कैसे हैं ठीक ठाक। निदली कहती है कि पोस्ट पर चैट नहीं करो आप लोग हमारे कमेंट गुम हो रहे हैं, ये बिल्कुल यही रीजन है जो लोग पोस्ट के ऊपर चैट कर रहे होते हैं ना फिर कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं। और चाचा खाले तुम्हारे साथ कहते हैं बंडल ऑफ थैंक्स बेटा। अच्छा फहीम भाई को बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं बताएं तो। इंतजार अली हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम ओके तमाम के भी चौथा भली करी आया। चाचा कहते हैं कि मेरी स्किन भी ऑयली है मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करूं, आप डी स्किन का फेस वॉश यूज कर सकते हैं डी स्किन की ब्यूटी क्रीम यूज कर सकते हैं दोनों प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती को जो है ना वो बढ़ा देंगे और आपके चेहरे पर चार चांद लगा देंगे तमाम चेहरे जो ऑयल भी कंट्रोल थी वेंदो तमाम खूबसूरती में भी इजाफो अची वेंदो।

हांजी पहिरियां गुल छॾियां पेर पोइ रखजां पंहिंजी गाॾी मां पेर पोइ रखजां हलाए अच्छा वफ़ा शहज़ाद हुसैन कोसो भाई में सुन रहे गरीब आबाद मोरी खां तव्हां असांजो प्रोग्राम जॉइन कयो आहे मोहबतूं प्यारे सोणे भाजू और इंतज़ार भाके ने टॉपिक पढ़ा हया और शर्म ओके ओके जी महर इरफान सियाल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद कहते नाइस शो मैम आरजे आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम शिकारपुर क्या बात है जी असां नानाणनि जे घोट वेठा शिकारपुर वारा माण्हू बि बार टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कनि पिया ऐं शिकारपुर में बि हर जॻह ते टी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही आहे मां पुछा कराई बिल्कुलु मूंखे इहा ई ख़बर पई त बाबा टी स्किन ब्यूटी क्रीम शिकारपुर में सफ़ा ज़ोरो शोरो से मिल रही है तो आप सारे लोग जितने भी शिकारपुर वारे लोग हमें सुन रहे हैं टी स्किन ब्यूटी क्रीम आप वहां से भी आराम से परचेज कर सकते हैं

तव्हांखे बि फुल मोकल आहे, पर पहिरियां टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो, ठीकु आहे? पोइ तव्हांखे नखरा बि ठहंदा। गोला भाई में सुन रहे हैं जेकब आबासी, आपने हमें ज्वाइन किया है, जबरदस्त कंपेयरिंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहे आप भी। और जी अनवर भाई हमारे साथ हैं,

अच्छा अनवर भाई लिखते हैं कि उस्ताद शागिर्द का पुछो तो बुधाए शादी और जंग में केड़ो फर्क है। शागिर्द एकदम जवाब दिनो उस्ताद महाजर जंग में दुश्मन सा समझौतो करने का कुछ मौका मिलना है पर शादी में को भी समझौतो न तो हले उते सिर्फ गैर मशरूत शिकस्त तस्लीम करनी पवंदी आहे। केदा त सतायल आयो अल्लाह तहां सब जी जी बिल्कुल आपने सही पहचाना निगत नाज आ चुकी है एंजॉय कीजिए निगत नाज को और मुगल उमरानी भाई हमें सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया स्टिकर सामने शेयर कर दिए हैं। मीर मुमताज अली जतोई भाई वालेकुम अस्सलाम अदी सदरा बिल्कुल ठीक ठाक आई तमाम चाहे अल्लाह पाक तमाके खुश रखे हमेशा मुस्कुराइंदा रहो माशाल्लाह प्रोग्राम बेहतरीन लाजवाब कंपेयरिंग आई गोठ आगा खान जतोई लाड़काने खान मीर मुमताज अली जतोई और एस मुमताज मोहम्मद मुदस्सर जतोई तमाम भाउन जो मोहब्बत प्रोग्राम के पसंद कर स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कर बाबा जी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम्हारे खूबसूरती आई तमाम मर्द हजरा तमाम खवातीन हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था आई फायदो हासिल करे सको था तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो आई सुन सुन थी वन्यो।

अच्छा अली रजा लगारी भाई हमारे साथ है गोठ जाम खान लगारी से। अली रजा लगारी भाई सिस्टर सिद्रा वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, कहती हूँ आपका शो तमाम नाई से सॉन्ग हाले। अच्छा चलें ठीक है ठीक है, ये गाना आपको सुनाएंगे और कहते हैं प्लीज प्ले करना डेडिकेट टू अजहर लगारी, आकिब लगारी, आजी गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, खालिक लाशारे। सिस्टर हमारे गांव में ब्यूटी क्रीम नहीं मिलती है, आप बोल रही हैं सिस्टर। अच्छा हाँ मैं बोल रही हूँ, तो जो नंबर आपको बताया ना बिल्कुल उस नंबर के ऊपर आप रब्ता करके अपने गांव में डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा सकते हैं। तो जल्दी से नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल कराइएगा और नाम जरूर उन्हें बताइएगा कि आप कौन सी क्रीम अवेलेबल

0: जी हिदा चला भेज दीजिए, आपका गाना भी लगा देंगे। मेरी दीदी, अरे मेरे कमेंट्स भी नीचे रह गए, नहीं ऊपर चले गए। जी फहीम, आपका जवाब मैंने देख लिया था और शायद पहला जवाब आप ही का था। रमेश ठाकुर हमें सुन रहे फ्रॉम सुल्तानाबाद। ओके रमेश भाई, आपको भी वेलकम की थी, थैंक यू सो मच के साथ। चलिए जी यहाँ पर
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, असली ग्लो हर निया जोशो, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
4: हुकूमतूं एहतजाज कंदड़ सभु हाराए रहिया आहिनि। धुरियूं अना ज़िद ऐं धड़ाबंदियुनि खां मथां थी ॻाल्हियूं कनि, तव्हां मां केर बि फाते न थींदो। अॻुभराई सदाई रियासत कंदी आहे, रियासत पारां अॻुभराई कई वञे। हिक ॿिए जी इज़त नफ़्स खे बुरा बुरा करणु कम ज़र्फ़ी आहे, हीउ को फ़ख्र जोॻो कमु न आहे। नून लीग जे सीनियर अॻवान सदर रफ़ीक़ जो बयानु। सदर रफ़ीक़ चयो त महांगाई, बेरोज़गारी, नाइंसाफ़ी ऐं दहशतगर्दी जी बाहि में सड़ियल पाकिस्तान चुंगी रहियो आहे। पाकिस्तान जो सॾु ॿुधो, सिविल सोसाइटी, साहिब दिल ऐं दर्दबंद माण्हू सुजाॻ थियनि, जेके जिते आहे उते आवाज़ु कनि।

केपी सी में एमबिली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती जो मोहसिन नकवी के जवाब स्पीकर बाबर सलीम सवाती चयो ता मोहसिन नकवी चुनल अवामी नुमाइंदो है पार्लियामानी निज़ाम जो हिस्सो हुजे हाँ ता कैसे मालूम हुजे हाँ असेंबली मेंबर्स के हासिल पार्लियामानी इस्तेकाक नई ईजाद ना है वडे अरसे खां पार्लियामानी रवायतुन कौमी ए सूबाई कानून जो हिस्सो है पार्लियामानी इस्तेकाक कें मेंबर के कानून का मथो नथो बणाए हर मेंबर जांच केस ऐं अदालती कार्रवाई जो मुंहुं ॾींदो अवां राज्यूदाई में चूट जो कानून मंजूर कयो त उहो कानून आहे अवां पार्लियामेंटरनि खे अॻुवा रिश्वत ऐं फ्लोर क्रॉसिंग ज़रिए कानून मंज़ूर करायो त उहो कानून आहे ख़ैबर पख़्तूनख़्वा असेंबली में हुकूमत ऐं अपोज़िशन जमायतूं इतफ़ाक़ राय सां कानून मंज़ूर करे त उहो कानून आहे मोहसिन नकवी सोचे त कहिड़ी शइ खे कंहिंसां भिटाए रहियो आहे।

तहरीक इंसाफ तरफ़ां लॉन्ग मार्च मुलतवी करण बावजूद इस्लामाबाद के रेड जोन तरफ कंटेनर की तादाद में वाद शहर अंदर दाखिल थींदड़ ऐं ॿाहिरि निकरण वारनि रस्तनि तां कंटेनर्स के हटाए किनारनि ते रखियो वियो। अटक पुल तां बि रुकावटूं हटाई वियूं। जी टी रोड ते चइनि ॾींहनि बाद ट्रैफिक बहाल। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे M1 तां रुकावटूं हटाइण जो सिलसिलो जारी। पीटीआई जो लॉन्ग मार्च रोकण लाइ मोटरवे ते भारी जूं बोरियूं, लोही सीखुनि जूं शीटूं ऐं कंटेनर रखिया विया हुआ। टैक्सला में पंजाब ईंदड़ ईंदड़ ट्रैफिक मामूल ते अची वई। कंटेनर्स हटाए रोड ते किनारनि ते रखिया विया। मियांवाली में सी पैक रोड अञा ताईं बंदि।

खानपुर महर जो सहाफ़ी अज़ीम सियाल मुबैन आगवा संदस कार पनोअकल भरसा लावारिस हालत में थे वारसन जो चवण है अज़ीम सियाल रात देर से घर वही रहे हो तो खानपुर महर थाने के धमाके से अगवा कह वो सहाफ़िन जो घोटकी में नेशनल हाईवे से धणो ट्रैफिक मुतल सहाफ़ी अज़ीम सियाल के फौरी तौर बाजियाब कराने का मुतालबो सूबाई घर वजीर ज़ियालनचार जो नोटिस डी आई जी सखर का तफसील तलब ज़ियालनचार है तो वाक़े की शफाफ जाँच कराए मुगवी सहाफ़ी के महफूज बाजियाबी के यकीनी बनाया वे सखर में जज के हमले जो शहन औरतों समेत एक ही खानदान के नव जणन से दहशतगर्द एक्ट तहत केस दाखिल एक औरत समेत टे जणा गिरफ्तार सी सेक्शन थाने से SHO इमरान भयो की फरियाद से केस दाखिल कह वो मखमूर संदस भाव गोसबख्श जाल फातिमा पुटन इब्राहिम असद धीरामना सन्ना जरियत मुस्कान ए जरीना जाल गुलाम नबी सुमरो जवाबदार तौर नामजद जरन मूजिब पुलिस गोसबख्श सुमरो असद सुमरो संदस भेण मेघ सुमरो के गिरफ्तार कर वरतो FIR के मतन में जाना वो है जवाबदार सेशन जज जावेद मीरानी की गाड़ी रोके कैसे यरगमाल पढ़ाए बंजड़ा कई

हैदराबाद में वापारी नरेश कुमार जे केस में गिरफ्तार कयल ब जवाबदार अदालत आरोपेश टंडू यूसुफ पुलिस जवाबदार वकास मुगल ऐं असद अली खे ड्यूटी मजिस्ट्रेट आॾो पेश कयो। पुलिस पारां जवाबदारनि जी जिस्मानी रिमांड जी इस्तदा पुलिस ज़रियनि जो चवणु आहे त नरेश कुमार सां वकास मुगल जो मुबैना तौरु कणिक ऐं ॿियनि जिन्सनि जो गॾियल कारोबारु हो। नरेश कुमार जा 60 लख रुपया वकास ॾांहुं रहियल हुआ। पैसनि जी घुर तां नाराज़ थी वकास दोस्त असद अली धमाद सां गॾिजी खेस क़तलु करण जो मनसूबो जोड़ियो। धड़ो में हथियारबंद फौरन हथां क़तल थियल नारी जे वारसनि जो लाश रखी धणो। सियासी समाजी अॻवाणनि ऐं शहरनि जी वॾे अंग में शिरकत। पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। वारसनि जो चवणु आहे त ठटे खां वापसि धड़ो वेन में अची रहिया हुआसीं त धड़ो बेलो रोड ते हथियारबंद फौरन रोकण जो इशारो कयो। गाॾी न बीहण ते जवाबदारनि सिधी फायरिंग कई। गोलियूं लॻण सबबि 17 वरनि जी मुर्क थी रजमेमण थॾे ते दम ॾिनो। ड्राइवर यार मोहम्मद सोलंगी ज़ख़्मी थी पियो। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फराहम करण जो मुतालबो। टंडो आदम में अवामी तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक पारां सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ धरणो। लतीफ़ गेट खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी धरणो ऐं वियो। वॾे अंग में औरतूं ऐं ॿार बि शरीक। अॻवाणनि चयो त सिंध खे टुकड़ा टुकड़ा करण जी साज़िश कॾहिं बि कामयाबु थियणु न ॾींदासीं। केसनि ऐं गिरफ़्तारियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं। सिंध जे वसीलनि ऐं पाणी ते धाड़े जी साज़िश ख़िलाफ़ जदोजहद जारी रहंदी।

ऐं सॼी दुनिया में अॼु दरियाहनि जो आलमी ॾियारो मल्हाए पियो वञे। एसयूपी जे सर ते सिंधु तोमे साहु मुंहिंजो जे सिरे हेठि सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं कढी वियूं। उमरकोट, शहजादकोट, सेवण, काज़ीबंद, सकरंड ऐं दौड़ में रैलियूं कढी वियूं। बाड ऐं ठुलो, नसीराबाद, बुलड़ी शाह करीम, गुलाब लकारी ऐं ठरी मीरबा में बि रैलियूं कढी सिंधु दरिया सां मुहबत जो ज़हार। अॻुवाणनि चयो त सिंधु दरिया खे बचाइण लाइ निकिता आहियूं। सिंधु मां गैरकानूनी किनाल कढी सिंध खे सुकाइण जूं साज़िशूं कई पियूं वञनि। सिंधु दरिया असांजी ज़िंदगी ऐं मौत जो मसइलो आहे। धाड़ो हणु न ॾींदासीं।

0: बाल कमजोर, बेजान और टूटने लगे हैं? अब
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, ऑयली हो या फिर किसी भी तरह की आपकी स्किन हो, तो उसके ऊपर आप इजीली डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले लोग जो है ना, वो अच्छे से जानते हैं कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने के फौरन बाद ही आप लोगों को अच्छे से रिजल्ट मिल जाते हैं। जैसे कि सिर्फ आपने दो रातें इस्तेमाल करी डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो आपको इतना प्यारा सा रिजल्ट मिल जाएगा। सिर्फ दो दिनों में वाज़ह नताइज के लिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हो। जदीद अज्जा से ये तैयार की गई है जनाब, जिसके अंदर आपको पता ही है कि वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रोबीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटिन है, पॉलिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है। ये तमाम चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई है जनाब, ताकि आप लोगों की स्किन जो है वो चमकदार हो जाए, डार्क सर्कल्स खत्म हो जाए, आपके चेहरे पर जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है ना वो खत्म हो जाए, या फिर आपके चेहरे पर जो है ना रंगत बहुत ज्यादा डिम हो चुकी है, आपके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन का ब्यूटी क्रीम जो है इसका इस्तेमाल करने के बहुत सारे आपको फायदे मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और इसके अंदर ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स डाले गए हैं ना, ये 2-in-1 फार्मूला बना देता है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इससे ये होगा कि भाई आपके चेहरे पर अगर आप ये नाइट क्रीम यूज करते हैं, ये है तो बेसिकली नाइट क्रीम, लेकिन ये 2-in-1 फार्मूला है, जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, कोई बड़ी सी आपने ट्रीटमेंट ले ली हो स्किन की, लेकिन ये मुनासिब सी कीमतों के अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पे चले जाइए और जनाब वहाँ से नाम लेकर तलब कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जिसे आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ दो रातों में आपको अच्छा खासा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है, तो जरूर से आप ट्राई करके देखिएगा। मैं तो चाहती हूँ आप सारे लोग इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आपकी खूबसूरती में इजाफा लाने के साथ साथ आपके चेहरे को चमकाने वाली और आपके चेहरे पर इतनी जबरदस्ती खूबसूरती लाएगी कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई जान क्या बात है, हम पहले क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई, अभी भी आप जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कर सके। तो खूबसूरती सिर्फ मेकअप का नहीं, नाम जो होता है ना वो नहीं होता, बल्कि अपनी जिल्द की सफाई, मुनासिब केयर और रोजाना की अच्छी आदत भी आपको खूबसूरत बना सकती है। अगर आप ऐसा ही ख्याल रखते हैं कि भाई अपने चेहरे का ख्याल रखेंगे, रोजाना अपने चेहरे को डी स्किन फेस वॉश से हम जरा वॉश करते रहेंगे, क्लीन रखेंगे और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का रोजाना हम इस्तेमाल करते रहेंगे, तो जब आप ये प्रोसेस डेली बेसिस के ऊपर जब यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको इतना खूबसूरत सा एहसास अपनी स्किन के अंदर महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप खुद ही कहेंगे भाई ये तो कमाल ही हो गया। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश, ये दोनों चीजें आप साथ में यूज कीजिए। और जो लोग ऐसा कहते हैं ना, हम क्रीम ही नहीं लगाते, हमने कभी अपनी जिंदगी में क्रीम नहीं लगाई, या फिर उन्होंने पहले क्रीमें लगाई थी, उन क्रीमों ने आपकी स्किन के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट नहीं दिया, और उस वजह से आपको जो है ना थोड़ा सा ये आ चुका है कि भाई क्रीमें तो लगानी नहीं चाहिए क्योंकि क्रीमें अच्छी नहीं होती। जो खास करके लोग मैंने देखे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्रीमों से थोड़ा अवॉइड कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को ये मैं बता दे चलूं कि जो में होती है ना वो आपके चेहरे पर खूबसूरती लाने के लिए होती है, और खास करके जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन के फेस वॉश का यूज करते हैं, तो इससे आपके चेहरे पर जो रंगत आती है, जो निखार आता है, जो खूबसूरती आती है, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त आपको मिल जाएगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपके चेहरे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने चेहरे पर अप्लाई करने के बहुत सारे फायदे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप इस्तेमाल किस तरह से करेंगे ये चीज भी जरा आ जाती है। आप बोलेंगे कि भाई आप फायदे तो बता देती, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज कैसे करना ये तो आप बताती नहीं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज करना बहुत ज्यादा आसान है, ऐसा नहीं कि बस आपने कुछ रॉकेट साइंस लगा लेनी है। आपने बस रात के टाइम जो है ना सोने से पहले एक काम करना है कि अपना फेस वॉश करना है। अपना फेस वॉश करेंगे डी स्किन फेस वॉश से, और फेस वॉश करने के बाद अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन कीजिए, और क्लीन करने के बाद सुखा लीजिए चेहरे को। ऐसा होता है ना, जिन लोगों के चेहरे की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, ऑयली स्किन जिन लोगों की होती है, तो वो थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड किया करें, जो वे फेस वॉश करने के फौरन बाद ही टॉवल से अपना फेस वॉश जो होता है ना फेस को सुखाने लग जाते हैं। तो टॉवल का यूज मैं तो कहती हूँ कि भाई अपनी जिंदगी से जरा आउट कर लीजिए, खास करके अपने फेस को मत पोछा करें टॉवल से, क्योंकि टॉवल के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके फेस पर आ जाते हैं, उससे फिर आपके चेहरे पर एक्नी जो है ना उसका रुझान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप एक्नी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कुछ आदतें अपने अंदर भी अपनानी होती है, और कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स का इंतखाब भी करना होता है। तो अच्छे से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए डी स्किन फेस वॉश से, उसके बाद चेहरे को ना सुखा लीजिए अच्छे से, उसके बाद आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर देनी है। उंगलियों की मदद से आराम आराम से प्यार से लगाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे के अंदर खुद ही जज्ब हो जाएगी। आपने मसाज बिल्कुल भी नहीं करना, बस प्यार से लगाइए, सुकून से लगाइए और लगाने के बाद जो है ना आपको इतना अच्छा प्यारा सा रिजल्ट मिल जाएगा। दो रातें जब आप लगातार यूज करेंगे तो आपको एहसास होगा कि भाई वाकई इतने अच्छे कमाल के हमें रिजल्ट्स मिल चुके हैं। आपकी रंगत में इजाफा होगा, आपके चेहरे पर जो ये खतरनाक से असरात होते हैं ना, जैसे कि आपके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम है, एक्नी के निशानात हैं या फिर आपकी स्किन काफी ज्यादा मुरझा सी चुकी है, तो वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। आपके चेहरे पर एक निखार होगा, एक ग्लो होगा और एक खूबसूरती होगी जो कि आप वाज़े देख सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएंगे तो जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 2970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-34 नहीं नहीं थोड़ा गलत हो 03-27-38-43-09 बुड़ी 300 है 73-84-309 ही नंबर तव्हां डायल कंदा पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से। नंबर डायल करण खां फौरन बाद ही तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करायो वेंदो। सो जल्दी जल्दी अवेलेबल करायो, पंहिंजे खूबसूरती जो ख़्याल रखो ऐं असांखे ॿुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूस कई कोन कई ऐं न कई आहे त छो न कई आहे, जल्दी कयो बाबा। ऐं असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो ऐं मूंखे ॿुधायो किथां किथां तव्हां असांखे जॉइन कयो आहे ऐं टॉपिक मूं अव्हां खां पुछियो आहे। मूंखे ॿुधायो उहो कहिड़ो डर आहे जेको औरत खे खूबसूरत बनाए छॾींदो आहे।

अजय हिकड़ी गाल याद अची वई पर छॾे सहाली कोन थी ॿुधायो मां. अच्छा अगरि तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कयो था त मूंखे लाज़मी ॿुधाइजो. यहां पर पैनल की जानिब आतें तो आपके मैसेजेस मुझे मिल चुके हैं जी बहुत ज्यादा वाले, तो उनको भी जरा रीड कर लेते हैं. और सबसे पहले मुझे मैसेज किया है वरियाम अली जतोई.

ओके जी वरियाम लिखते हैं कि सिद्रा है ना प्यारे शो में दिल सा सिक्का सा सलाम था कयूं एंड वीआईपी सफा शो आहे थैंक यू वेरी मच वरियाम और हमारे साथी जी गोट मोहम्मद तैयब थे बुखा हबीबुल्ला थे वो कहते तमाम जो शो वेरी नाइस आए सलाम तमाम के वालेकुम अस्सलाम तमाम के प्यारा भा हबीबुल्ला थे वो कहते सॉन्ग बुधराए शमन मिराली जो दो शमन मिराली जो गानो बाबा और ये हमारे साथी माहीन आज एंजल आई है हम प्रोग्राम सुन रहे हैं टॉपिक अच्छा ये आपने शायद गाना भी लिख दिया है ओके जी ओके माहीन और एंजल आप सबको हम वेलकम कहते हैं आप सब परियों को खुशामदीद डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा और खूबसूरती में जरा इजाफा लाइए ठीक है और हमारे साथ ही चाचा खालिद कहते बेटा सिडो सॉन्ग की रिक्वेस्ट है मां कोशिश क्या दी जो गानों बुधूं था ठीक है और असद महर हमारे साथ ही विलेज हाजी दिलबर से असद महर भाई आपको वेलकम कहते हैं उनके अलावा अब्दुल्ला महर हमारे साथ हैं जी मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई थैंक यू सो मच आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं क्या बात है जी बढ़िया हो गया और जी मायरा हमारा शो सुन रही है मायरा को वालेकुम अस्सलाम खुशामदीद डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रही है मायरा इस्तेमाल करते रहिए जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए हमने इसीलिए तो हर जगह अवेलेबल करा दी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और ये मौजूद है वालेकुम अस्सलाम अलैहि सलाम अदर अच्छा मुन्नवर अली मुगल भाई हमारे साथ है मीरपुर खास से कहते हैं बहना ना करें भाई ना करें ऐसी तो बात नहीं है वैसे वाकई आपको ऐसा लगता है सच्ची बताए ओके जी मुनव्वर भाई खुश रहिए और बहुत शुक्रिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज भी कीजिए आप फेस वॉश का तो कर ही रहे हैं असाई आयू प्या था चू बाबा वांदो उंदो वाके वाके सुन तां सही था चो अच्छा निदड़ी आपने भी टॉपिक का जवाब दे दिया है ठीक है जी ठीक है मीर मुमताज अली जतोई भाई हमें सुन रहे हैं बहुत बढ़िया जी लाड़काना का तमाशा की ज्वाइन करा मीर मुमताज अली जतोई एस मुमताज जतोई ओके चाचा कहते हजार खान आपकी पसंद पर एआई जनरेटेड सॉन्ग हाँ जी वो सुनना चाहते हैं हम उनको सुनाएंगे रिजवान अली हमारे साथ है कहते बहन कैसी हैं आप नाइस शो है सॉन्ग सुनाए खुदा और मोहब्बत का प्लीज मैं ट्राई करती हूँ आपकी पसंद का गाना सुनेंगे और मुगल उमरानी भाई हमारे साथ है थैंक यू और निदड़ी कहती है कर कर नखरा हाजिर साई नखरा कना सी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो हणंदा आयूं और महर इरफान सियाज साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं हजार भाई कहते हैं हजरत अली का कॉल है जो चीज मुश्किल से मिलती है वो देर तक चलती है क्या बात है क्या बात है दिस इज गलत बात भाई निदा मुझे समझ नहीं आता कि ये सिटी का नाम था ये या इंसान का नाम था आई डोंट नो बस लोग मैसेज कर देते हैं मैं वैसा के वैसा पढ़ देती हूँ इंतजार भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं इकबाल लाशारी हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं आपने टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है जी इकबाल भाई आपका बहुत शुक्रिया और अबू हनीफ अलबलोची कहते हैं मुमताज लाशारी का गाना सुनाए मैं कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना सुनेंगे और फरवा कहती है आप ही सॉन्ग रिक्वेस्ट है दिल बच बच बच यू गानो बुधो सैया सैया हाजिर हाजिर और नजर मोहम्मद भट्टी हमारे साथ मौजूद है भाई को वेलकम कहते हैं वीआईपी प्रोग्राम थैंक यू डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कया वो न मुख्य इो तो बुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करने वारा मानो हथ तो मथे कयो कमेंट में एक दफा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो लिखो दिसा दसरी

कंप्यूटर क्रीम बाबा वठी चो हाणे तू देर न कर जल्दी वञ बाबा जल्दी वञ रीस कंप्यूटर क्रीम वठी आ और ताले मरी समारोह भाईअ में सुन रहे ताले मरी भाई तव्हां जो मोहबतू आहे तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया ऐं पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो अच्छा बतूल मेमन हमारे साथ है बतूल बिल्कुल आपका जो कमेंट था ना वो ऊपर चला गया था मेरी जान आपको वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया आपने दोबारा से कमेंट शेयर कर दिया कहती अस्सलाम वालेकुम सदरा आई एम बतूल फ्रॉम खांडो सिटी मटियारी से आपका प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है अम्मी के साथ हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं आपकी आवाज कोयल की जैसी कल आपको मैंने सॉन्ग कहा था लेकिन आपने नहीं चलाया था उस बात पर हम आपसे बहुत नाराज इतनी छोटी सी बात पर नाराज हो गए वैसे गाना आपका मैंने ढूंढा था मुझे मिला नहीं था तो मैं कोशिश करती हूँ आपको कोई अच्छा सा गाना डेडिकेट कर देंगे ठीक है बतूल मुझसे नाराज मत होइए और अपनी अम्मी को भी बोलिए मुझसे नाराज मत होइए क्योंकि जो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं फिर मुझे मनाना नहीं आता तो फिर मैं क्या करूँ तो खुद ही राजी हो जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए हिदायतुल्लाह कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आपकी पसंद का गाना सुन लिया अली रजा लगारी हमें सुन रहे हैं जी वोट हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी खां कुरबान अली खास के लिए अली रजा लगारी ताँस अगर मौजूद है थैंक यू

0: और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर। स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें आगा जब्बार 03009312700।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

क्या बात है, वापस आ चुके हैं जी दोबारा से हमारे लास्ट और सैडी लिंक में. कहते हैं ना सिद्रा के प्रोग्राम का जो लास्ट लिंक होता है वो सैडी लिंक होता है. वो इसलिए क्योंकि मैं सारे जितने भी आपके सैडी वाले गाने होते हैं उठा के भी लास्ट लिंक में फेंक देती हूँ. मैं कहती हूँ ये सारे तो हम लास्ट लिंक में ही सुनेंगे. तो बिल्कुल आप लोगों को वेलकम कहते हैं और साथ साथ यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे ही नहीं बताएं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों की खूबसूरती के लिए भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जरूरी इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपने बहुत सारे ऊट पटांग वाले प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगा के देख लिए हैं, लेकिन अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ ये आपकी स्किन के लिए 2-in-1 फार्मूला भी, यानी कि आप लोगों के लिए नाइट क्रीम तो हो ही गई लेकिन इसके साथ साथ जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज करते हैं तो आप लोगों को फेशियल वाला रिजल्ट मिलता है. फेशियल ऐसा वैसा बहुत महंगा वाला फेशियल, बिल्कुल वैसा रिजल्ट मिलता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स है. ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का मैं जिक्र करती हूँ ना वो इसलिए करती हूँ क्योंकि ये दोनों जो चीजें ना बहुत प्रीमियम है, बहुत खास है और ये बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट के अंदर एड की जाती है. अगर हम बात करें यहाँ पर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 ही प्रोडक्ट है जिनके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स को एड किया गया है. तो इसी वजह से डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो क्वालिटी है वो इतनी बेस्ट है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा. तो मर्द हजरात है, खवातीन है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है. एक और मजे की बात है कि भाई इस्तेमाल करने के बाद ही आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम खूबसूरती की बात हो और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर किया जाए बाबा ये कैसे चलेगा. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर नहीं कीजिए भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए. डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके चेहरे पर ये जो जमा हो चुके होते हैं ना एक्नी प्रॉब्लम्स या फिर आपके चेहरे पर जो एक्नी के निशानात होते हैं या रिंकल्स आ चुके होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको आप कई टाइम से फेस कर रहे हैं लेकिन आपको सोल्यूशन का पता ही नहीं, तो आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके उन तमाम चीजों को खत्म करना है अपनी स्किन और आपको पता चल जाएगा कि भाई वाकई सिद्रा इतना बताते हैं तो क्यों बताते हैं, क्योंकि भाई गाल में दम होता है, प्रोडक्ट में भी दम आए. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करे सोना सोना थी भाई.

सिंगार कया अथई सवा कुंवार लॻे ई तव्हांखे कुंवार लॻण जी ज़रूरत न आहे पर बसि तव्हां इन्हनि सिंगारनि खां थोरो पाण खे बचाइण चाहियो था छो त मेकअप जॾहिं तव्हां पंहिंजे चहिरे ते अप्लाई कंदा मेकअप जा खोड़ सारा साइड इफेक्ट तव्हांखे मिली सघनि था पर उन्हनि चीज़ुनि खे अगरि तव्हां साइड रखो या डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करो साईं वाह वाह थी वेंदी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे डी स्किन जो फेस वॉश बि तव्हांखे मिले पियो तव्हां क़रीबी जनरल स्टोर ते वञो ऐं नथा मिलनि त पोइ तव्हां जल्दी जल्दी नंबर ते राबितो करे सघो था ऐं नंबर जेके पूरे प्रोग्राम में तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां ऐं जेको मां चई वियसि त बाबा मोटी अचां ब्रेक खां पोइ तव्हांखे नंबर हिकु हिकु करे ॿुधायां थी सो तव्हांखे नंबर हिकु हिकु करे ॿुधायांव थी तव्हां नोट करे वठो ठीकु आहे ओके सो पहिरियों नंबर आहे 3 5 2 5 9 7 ऐं ॿियो नंबर आहे 3 3 7 3 8 4 3 9 Sounds so funny.

0: वारी पार सोनी
1: गानो साई भलो यो गानो वड़ी वयो पर हाने तहां मके बताए ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो या को डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल को फौरन बाद तमा जे चेहरे तेडी खूबसूरती अची वेनी तवा का मानो वरी वरी पुछना बुधायो ता सही दी खूबसूरती काडा आंदी तो आई ता उनन के बुधायो बाबा ही कमाल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले ता पोता नंबर से राप्तो करे वठो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए वठो ठीक हो गया। अच्छा ये फायजा अली की आवाज में गाना है जो की मेरा फेवरेट है इसीलिए मैंने लगा ली वरना शायद नहीं लगाती डिसो डिसो मके नहीं सेल्फिश आया साथ है ये फजली मौजूद है कहती है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस आज सिस्टर सदरा मुस्कान कैसी हो डियर स्वीटी मैं बहुत अच्छी तुम बताओ कैसी हो मजे में और दर्दे दिल हमारा शो सुन रहे हैं थैंक यू वेरी मच दर्दे दिल और मुनव्वर भाई बस कर जाए महबूब अली मोरो सिटी से हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम कहते हैं FM रेडियो की कून से खुश रहो हमेशा के लिए आमीन आमीन आमीन और कहते हैं कून से जलाल का सॉन्ग तो प्ले करो प्लीज थोड़ो तहां के अचड़ में लेट थी भैया है।

सराज में जतोई भाई में सुन रहे हैं सऊदी अरबिया से, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं भाई जान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ दर्द दिल, वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, आपको भी वेलकम हो गया। हजार भाई कहते हैं गलत बात नहीं सिस्टर, सच्ची बात है। कौन सी बात है, किसकी बात है, कैसी बात है? अच्छा मुख्तार लाशारी भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी, थैंक यू। दर्दी दिल कहती है मेरा कमेंट, आपका कमेंट जी बिल्कुल हो गया हो गया। निदली कहती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ओ ये जियो करे।

हाँ भाई फरवा की पसंद अच्छी है सुठा सुठा गाना फरमाइश कर दिया छोकरे वरियाम कहते हैं सदरा शाम वाले प्रोग्राम में सॉन्ग प्ले कंदा हाजिर हाजिर बिल्कुल यो प्रोग्राम गानों मतलब तांजला शाम वाले प्रोग्राम में हलाई छड़ीना से ठीक है छाया कंदो थोड़ो जो अच्छा ये हमने गाना लगाया है निदा के चॉइस के ऊपर सो हम सुनेंगे अच्छा ये आपके कॉमेंट्स भी बड़ी जमा हो चुके हैं तो अच्छा ये तो रीमेक्स में चल गया है चलो इसको छोड़कर हम जो है ना वो ओरिजिनल वाला सुनेंगे

बात है, डीस्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे ही नहीं, मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि डीस्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तभी तो खूबसूरत होंगे। तो डीस्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले लोगों से पूछिए जरा कि डीस्किन ब्यूटी क्रीम उनको कितना खूबसूरत बना चुकी है। तो अब आपकी बारी है, जाइए डीस्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो सके। अब्दुल गफार भाई हमें सुन रहे हैं, खुश आमदीद, प्यारे भाई को वेलकम कहते हैं। बतूल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। रमजान भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में हैं। अच्छा, मोहम्मद जमान भाई आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। सिकंदर, सालार सिकंदर हमारे साथ हैं। मुमताज मलिक का गाना हम सुन चुके हैं पहले से ही, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। आरसी है हमारे साथ। एसन कहते हैं कि सबसे पहले वो बात बताओ, हम नहीं छोड़ेंगे आपको, कौन सी बात थी, मैं तो भूल ही गई, पता नहीं कौन सी बात थी। उस टाइम कहते ना

अच्छा भाई, इरम की शादी, इरम को शादी वाला गाना डेडिकेट कर देंगे, ठीक है? बाकी शादी की बिरयानी खाने की कोई उम्मीद नहीं। तो बस इरम को बोलिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको दो रातों में इतना गोरा चट्टा प्यारा बना देगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि भाई क्या लगाया है, क्या लगाया है, बताएं तो उन्हें बताइएगा जनाब ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके खूबसूरती के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, ये मेडिकेटेड फार्मूला है और 2-in-1 फार्मूला है, तो सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। खूबसूरती का ख्याल रखिए और हमेशा के लिए खूबसूरत रहिए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। दिमागी दही बनाने के बाद एक बहुत ही सुंदर सा गाना आप लोगों के समातों की नजर, इस गाने की फरमाइश हमें माहिम ने कर दी थी।

बस फिर अब्दुल्ला आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और डी स्किन का फेस वॉश ऑलरेडी जो लोग यूज कर रहे हैं या फिर जो लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं लेकिन उनको डी स्किन का फेस वॉश अभी तक नहीं मिला तो आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल कराते रहिए और खूबसूरती की दुनिया में कदम रखिए. हाँ जी अच्छा मोहसिन रजा एंड राजा लाशारी सुन रही है हमारा प्रोग्राम आपका प्रोग्राम वीआईपी वो डायलॉग सुनाओ सुनो जाना मैं बोलने ही वाली थी क्योंकि इस गाने के साथ मैंने एक शायरी रखी थी. व्हाट अ कोइंसिडेंस. मंजूर अली खास के लिए हमें सुन रहे हैं झंडो मरी से भाई आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ तो मेरे पास एक शायरी है वो जरा हम पढ़ लें.

सुनो जाना, तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो क्यों, तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो क्यों, तुम मेरी नजर का सुकून हो, कोई तुम्हें देखे तो क्यों, तुम मेरी आदत हो और कोई ये आदत अपनाए तो आखिर क्यों, तुम पे जो हक मेरा है वो किसी और का हो तो क्यों, फिर कैसे ना कहूँ, तुम मेरे लिए सबसे खास हो, तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो आखिर क्यों।

0: बनियल धाड़ेलन जी सरेंडर पॉलिसी भी नाकाम। सूबे में फुरू धाड़ा चोरियूं अगवा इंसानन जो कत्ल रोज जो मामूल बनियल। केटीए न्यूज खानपुर मार जो रिपोर्टर अजीम सियाल अगवा बाजियाबी ला 1 करोड़ रुपया भुंग तलब।
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: पाक नेवी पारां उत्तर अरबी समुंड में एंटी शिप क्रूज मिसाइल फायर करण जो कामयाब तजुर्बो। एडमिरल नवीद अशरफ मुशाहिदो कयो पाक नेवी में ताज़ो शामिल कयल आबदोज PNSM अंगूरता समुंड में लाइव वेपन फायरिंग जो तजुर्बो कयो वियो। अंगूरता फायर कयल मिसाइल पंहिंजे हदफ खे कामयाबी सां निशानो बणायो। नेवल चीफ नवीद अशरफ पारां जंगी सलाहतनि जी वाखाण कामयाब तजुर्बो उन अज़म जो इज़हार आहे त पाक नेवी वतन जी सामूरी सरहदनि जे दिफ़ा ऐं تحفظ لائے تیار ہے۔ حکومتوں احتجاج کندڑ سب ہارائے رہا ہیں۔ دھریوں انا زد دھڑا بندی کا متائیں تھی گالی کن تمام کیر پہ فاتح نہ تھی اگ برائی سطح ریاست کندی ہے ریاست پرا اگ برائی کئی بجے ایک بے کی عزت نفس کے برا برا کرن کم ظرفی ہے یہ کو فخر جگو کم نہ ہے۔ नून लीग जे सीनियर अॻवान सदर रफ़ीक जो बयान। सदर रफ़ीक चयो त महांगाई बेरोज़गारी नाइंसाफ़ी ऐं दहशतगर्दी जी बाहि में सड़ियल पाकिस्तान चुंघी रहियो आहे। पाकिस्तान जो सॾु ॿुधो सिविल सोसाइटी साहिब दिलि ऐं दर्द बंदि माण्हू सुजाॻ थियनि जेको हिते आहे उते आवाज़ बुलंद करे।

केपी असेंबली जे स्पीकर बाबर सलीम सवाती जो मोहसिन नकवी के जवाब। स्पीकर बाबर सलीम सवाती चयो आहे त मोहसिन नकवी चूंडियल अवामी नुमाइंदो आहे, पार्लियामानी निज़ाम जो हिसो हुजे हा त खेसि मालूम हुजे हा असेंबली मेंबर्स खे हासिल पार्लियामानी इस्तेकाक न ईजाद न आहे। वॾे अरसे खां पार्लियामानी रवायतुनि क़ौमी सूबाई कानून जो हिसो आहे। पार्लियामानी इस्तेकाक कंहिं मेंबर खे कानून खां मथां नथी बणाए, हर मेंबर जांच केस ऐं अदालती कार्रवाई जो मुंहुं ॾींदो। अवां राति जी ऊंदाई में छूट जो कानून मंज़ूरु कयो त उहो कानून आहे। अवां पार्लियामेंट खे अॻुवाएं रिश्वत ऐं फ्लोर क्रॉसिंग ज़रिए कानून मंज़ूरु करायो त उहो कानून आहे। ख़ैबर पख़्तूनख्वा असेंबली में हुकूमत ऐं अपोज़िशन जमायतूं इतफ़ाक़ राय सां कानून मंज़ूरु करे त उहो कानून आहे। मोहसिन नकवी सोचे त कहिड़ी शइ खे कंहिंसां भेटाए रहियो आहे। तहरीके इंसाफ़ तरफ़ां लॉन्ग मार्च मुलतवी करण बावजूद इस्लामाबाद जे रेड ज़ोन तरफ़ कंटेनर जे तादाद में वाध, शहर अंदरि दाख़िल थींदड़ ऐं ॿाहिरि निकिरण वारनि रस्तनि तां कंटेनर्स खे हटाए किनारनि ते रखियो वियो। अटक पुल तां बि रुकावटूं हटाई वियूं। जी टी रोड ते चइनि ॾींहनि बाद ट्रैफिक पाल पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे M1 तां रुकावटूं हटाइण जो सिलसिलो जारी। PTI जो लॉन्ग मार्च रोकण लाइ मोटरवे ते बारी जूं ॿोरियूं, लोही सिखुनि जूं शीटूं ऐं कंटेनर रखिया विया हुआ। टैक्सला में पंजाब ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफिक मामूल ते अची वई। कंटेनर हटाए रोड ते किनारनि ते रखिया विया। मेवाली में सी पैक रोड अञा ताईं बंदि।

0: किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने हम नहीं देंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हो, ना फसाद करवाने देंगे किसी को, ना पहले जो कराची चीजें फेस कर चुका है वो अब दोबारा इंशाल्लाह उस तरह के तजुर्बे नहीं करेगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपकी मौजूद है, गवर्नमेंट किसी भी साजिश को नाकाम बनाएगी।
1: सूबन के मामले में का भी साजिश या कराची में कंखे फसाद कराने की इजाजत न डींदी। एमक्यू से तनकीद कर नो चाहें, मुतदावारा इल्ज़ाम बाजी बदरा आवाम की भलाई लाए तजवीजू दियन। शर्जिल मेमुन जो कराची में मौसमियात फ्लाईओवर के इफ्तिताबाद मीडिया से गालू। शर्जिल मेमुन पीटीआई के एहतजाज बारे ऐलान सबब इस्लामाबाद घेरे में आयल है, करोड़न जो नुकसान थो है। लीडर असाजा भी गिरफ्तार थे पर अस कदें भी धरना नया न वरी शहरन के तकलीफ दींद एहतजाज क्या। कराची में यूनिवर्सिटी रोड ठही चुको है, खुलल है, रुगो पौना 3 किलोमीटर जो रस्त रहल है जो जल्द मुकम्मल थोड़ा।

0: हैदराबाद के व्यापारी नरेश कुमार के कत्ल केस बजवाबदार टंडी के रिमांड से पुलिस हवाले। टंडो यूसुफ पुलिस जवाबदार वकास मोगल एसद अली धमाज के ड्यूटी मजिस्ट्रेट आडो पेश कर। पुलिस जरिए मूजिब नरेश कुमार से वकास मुगल जो मुबैना तौर कणक ए बेन जिनसों को गड़ियल कारोबार हो। नरेश कुमार जहाँ 60 लाख रुपया वकास डां रहा हुआ। पैसों पानी से धाड़े की साजिश खिलाफ जदोजहद जारी रही। सजी दुनिया में अज दरिया जो आलमी ढड़ो मल्हे पे वे। एस यू पी के सद से मुख्तलिफ़ शहर में रैलियो उमरकोट शदादकोट सेवण काजी अमन सकरन दौड़ में रैलियो कड़ी हुई। बाडे ठुल नसीराबाद बुलोडीशा करीम गुलाब लकारी ठरी बिरवा में भी रैलियो कड़ी। सिंधु दरिया से मोहब्बत जो इजहार अगुण है तो सिंधु दरिया के बचाने लाइ निकता है। सिंधु दरिया में गैरकानूनी किनाल कड़ी सिंध के सुकाने जो साजिशू कई पे वन। सिंधु दरिया असि जिंदगी मौत जो मसलो है। धाड़ो हण न ींदी
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: सिंध मां धाड़ेल राज जो खात्मो ख्वाब बणियल धाड़ेलन जे सरेंडर पॉलिसी भी नाकाम सूबे में पुरूं धाड़ा चोरियूं अगवा इंसानन जो कत्ल रोज जो मामूल बणियल KTN News खानपुर मर जो रिपोर्ट अज़ीम सियाल अगवा बाज़ियाबी ला 1 करोड़ रुपया भुंग तलब अज़ीम सियाल जी गाड़ी पनवा किले जे कचे मां हथ DIG सखर KTN News खानपुर मर जे रिपोर्ट अज़ीम सियाल जे अगवा जी तस्दीक करे छडी घरू वजीर ज़ियाल अंजार ऐं IG सिंध साहिब जे अगवा जो नोटिस वरितो DIG सखर खां रिपोर्ट तलब DIG सखर नासिर आफ़ताब पठाण चयो आहे त KTN News जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल अगवा थियो आहे बाज़ियाबी लाइ संजीदा आहियूं ड्रोन कैमराउनि ज़रिए मॉनिटरिंग शुरू कई आहे KTN News खानपुर मार जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा घोटकी सखर शहदादपुर रतोदेरो बख्शापुर भान सैदाबाद न्यू सैदाबाद ठिकराठो कश्मोर डहरकी जरवार रोहिड़ी कंबर कोटड़जी राधण पनवाकल तंगवाणी ठारू शाह मुरीद शाख डोकरी मीरपुर साकरो अठहठ मोरी गंबट मदेजी मुबारकपुर सगियूं ड्रिब मेहरशाह ऐं ॿियनि शहरनि में कलम धरण एहतजाज कयो साहिब अज़ीम सियाल खे बाज़ियाब कराइण जो मुतालबो

0: गुज़िरियल राति हथियारबंदनि जी फायरिंग में क़त्ल थियल 15 वारनि जी निंगरीअ जो लाश रखी धरणो वारसन ऐं सवें शहरनि मक़तूल निंगरी मुर्क मिमण जो लाश पिंजारी पुल चौक ते रखी धरणो आयो। मुज़ाहिरीन जो बिना देर निंगरीअ जे क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। बलोचिस्तान जे इलाइक़े ओस्ता मोहम्मद में हथियारबंदनि जी फायरिंग, 2 ॼणा क़त्ल, 1 ज़ख़्मी। बाबाकोट थाणे जे हद में नौरोज़ उमराणी ऐं संदसि गन में नबी बख़्श खोसो खे क़त्ल कयो वियो। हथियारबंदनि जी फायरिंग में 1 ॼणो ज़ख़्मी थियो, लाश ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल। पुलिस मूजिबि वाक़िए जो कारण मालूम न थी सघियो आहे। गुपचाणीअ में वाह में ॿुढी फोत ॼणियल नौजवान खे क़त्ल करण जो इल्ज़ाम। वारसनि जो चवणु आहे त परवेज़ खे तशदुद करण बैदि क़त्ल करे लाश वाह में लोड़ियो वियो आहे। ऐं कश्मीर में सिंध जे इम्कानी विरांगे, बदअमनी, महांगाई ऐं कबीलाई झेड़नि ख़िलाफ़ अवामी वर्कर्स पार्टी पारां रैली कढी वई। अॻवाणनि चयो त सिंध जो विरांगो कॾहिं बि न थींदो, सिंधू दरिया जे पाणीअ ते धारो क़बूल न कंदासीं। सिंध में कबीलाई दहशतगर्दी आहे, कारोकारी बि कारोबार बणिजी चुको आहे, अमन अमान बहाल करायो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
4: GFM 88
3: नेटवर्क
5: सिंध की आवाज

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

भारतीय सरपरस्ती में अफगान सरजमीन तीदड़ दहशतगर्दी शहर ने अमन लाय खतरो बणायल। ईरान के तजवीजों से अमरीका का बाजाबता तौर जवाब जो इंतजार। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखी है तो अमरीकी सदर जो शुरुआती रद्द अमल डिठो है। टियाकड़ी कंदड़न तरफा हतमी मौकफ जानने जो मुंतजर आयु। पासदारान इनकलाब है तो इन भेरे दुश्मन की जारियत जो जदीद हथियार से जवाब दिनों वो। अमरीका वट दक्षिण एशिया में निकलने का सवा बो को भी गस न है। नए आलमी निजाम के अमरीका की पुरानी हैसियत में वापस अचान की इजाजत न डी वी। कानून हथ में खड़ण और फसाद करण की इजाजत न डींदी। सिंध हुकूमत हर साजिश के नाकाम बणाई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन है तो इल्जाम हरण और सियासी पॉइंट स्कोरिंग बदरा मसलन के हल से ध्यान दियण घुर्जे। जलसन और जलूसन की इजाजत होजन घुर्जे। आवाम के परेशान न थियण घुर्जे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कराची के यूनिवर्सिटी रोड से ठहद रेड लाइन बीआरटी मनसूबे की मौसमियात फ्लाईओवर जो इफ्तिताह किया।

एरिया जी अब्दोज हंगोर पारा अरबी समुद्र में पहरी लाइव वेपन फायरिंग जो कामयाब तजुर्बो पीएनएसएम हंगोर डिगे फासिले ताई मार कंदड़ एंटी शिप क्रूज मिसाइल कामयाबी से फायर कयो। आईएसपीआर मूजिब एंटी शिप क्रूज मिसाइल हदफ के कामयाबी से निशानो बनायो है। पाक बेरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ लाइव वेपन फायरिंग जो मुशाहिदो कयो। नेवल चीफ हंगोर अब्दोज की जंगी सलाहियतुन अमले की पेशेवरानी महारत की सराह।

हैदराबाद में वापारी नरेश कुमार के पैसन की रेती लेती तथा कत्ल करण जो इंकशाफ पुलिस पारा ब मुख्य जवाबदार गिरफ्तार करण की दावा डीआईजी एसएसपी हैदराबाद चो है जवाबदार के टंडो जाम टंडो अलियार में गिरफ्तार कयो है रेती लेती तथा वकास मुगल असद धमाज नरेश के कत्ल कयो नरेश कुमार जा वकास मुगल ना घना पैसा रहल हुआ वकास मुगल असद धमाज के 10 लाख जो आसरो दे नरेश के कत्ल करायो एक जवाबदार फरार है कराची के दक्षिण जिले में रात शहीद थे पुलिस अहलकार वाले वाके में आला पुलिस ऑफिसर की गफलत साबित शेरीन जना कॉलोनी में पुलिस अहलकार की शहादत डीआईजी दक्षिण असद रजा एस एस पी महरोज अली की कारकर्दगी सवाल उथारे छा घरू वजीर जयाल अंजार के हुक्मन के नजरअंदाज कर मामूल बनाए छो शहीद अहलकार के घरू वजीर पारा तय थे एस पी के नजरअंदाज कर मंशियात फरोशन की गहड़ में मोकलने जो इंकशाफ तय थे एस ओ पी मुकम्मल तौर से नजरअंदाज कर सिंध के मुख्तलिफ शहर में दरियाओं के आलमी दिहाड़े से सिंधु के तहफ़ लाए तकरीबू ए रैलियों एस यूपी पारा सिंध तो में साह मुंज की उनवान से ठुल बाट कोटली ढोरो नारो सकरन सेवण नवाब वली मोहम्मद जोही डोकरी झंडोमरी बेन शहर में मुजाहरा छठे में दरियाओं के आलमी दिहाड़े से झिरक पुल वट सिंधु दरिया के भेटा पेश की हुई भगवान चाहिए सिंधु के धाड़ो कें भी सूरत में कबूल न कबूल

वेझो औरत घर अंदर गोली लगन सब मारजी वही गोठ भुट्टो फार्म में नाहिद जाल नदीम खखरानी गोली लगन सब मारजी वही औरत जे सस मुजिब नाहिद जो देर पिस्टल साफ करे रहे हो तो उचितो फायर करन सब केस गोली लगी पुलिस मुजिब औरत जो पोस्टमार्टम कराया वो है वाकई की वधिक जांच कई पी वे दड़ो में गुजरल रात हथियारबंदन की फायरिंग में कतल थे 15 वरन की निंगरी जो लाश रखी धरणो वारसन सभी शहर मकतूल निंगरी मुर्क मेमन जो लाश पिंजारी पुल चौक से रखी धरणो हो मुजाहिन जो बिना देर निंगरी के कतल में मुलविस जवाबदार गिरफ्तार करने मुतालबो

हिन सदीअ जो वॾो सच आहे। ॾात वॾी शइ नाहे, पर सच वॾी शइ आहे।

छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़ अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

रहता ही है। अच्छा जी, लड़ाई झगड़े वाले भी होते हैं, सब कुछ होता है, रिश्ता रिश्ता रहता है तो रिश्ता बनता है। अच्छा जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि आज, अच्छा मुझे कुछ कमेंट भी आ चुके हैं, मैं देख रही थी, मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स ने प्यारे प्यारे कमेंट करे हैं। पहले मुझे ये बताएं आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, भाई अपने सिटी का नाम भी मेंशन किया करें, मैसेज के साथ बताया करें। अच्छा जी, प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि आप लोग मुझे हमारे GFMATED के पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इस वक्त लाइव चल रहा है हमारा प्रोग्राम। इसके अलावा आप मुझे KFM1 पर मैसेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैसेज करने का तरीका ये है कि आपने SKR लिखना है एंड मैसेज टाइप करना अपना, देन आपने सेंड कर देना है 8881 पर। कितना आसान तरीका है ना। अच्छा, 8881 पर पहले मैसेज कर दिया करें, क्योंकि मैं सबसे पहले वहीं के मैसेजेस चेक करती हूँ, तो आप लोग वहाँ मैसेज लाजमी किया करें। आगे जी लिसनर्स, तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और लिसनर्स के कमेंट्स भी आ चुके हैं, वो भी शामिल करूंगी, फरमाइशें भी हैं। तो बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश है कल की तरह आज भी जो है मैं ये फरमाइश जो है कोशिश करती हूँ शामिल कर दूँ प्रोग्राम में। अच्छा जी, तो आप लोग मुझे ये तो बताएं आप लोग सुन कहाँ कहाँ से रहे, पाकिस्तान के किस किस गली कोने कूचों में, घर के गली घर के कोनों में कहाँ कहाँ बैठ के आप मुझे सुन रहे हैं। कोई लेटा है, कोई बैठा है, कोई चल रहा है, कोई खड़ा है, तो कोई शॉपिंग पर है, कोई सफर के दौरान मुझे सुन रहा है, जहाँ भी जिस जगह पे आप मुझे सुन रहे हैं जरूर मुझे बताया गया है। मुझे पता तो चले मेरी आवाज कहाँ कहाँ तक आप लोगों की समातों से टकरा रही है जाकर। अच्छा जी, नो हमने आज का सवाल मैंने ये रखा था, क्या जिंदगी कभी मौका देती है आपको अलविदा कहने का।

मुझे बताएं कैसा लगा आप लोगों को ये ट्रैक जो मैंने प्ले किया था ब्रेक में जाने से पहले. फर्स्ट ट्रैक था अलविदा का, और इससे मतलब कि आप लोगों को किसकी याद आई, कुछ सताया. तो जी इसके साथ ही एक और नेक्स्ट ट्रैक भी प्ले कर देते हैं प्रोग्राम में. एक अच्छा सा सॉन्ग मैं प्ले कर रही हूँ, और ये पाकिस्तानी पुरानी फिल्म है लेकिन बहुत अच्छी फिल्म है. इसमें पाकिस्तानी कास्ट हैं सारे, और ये सॉन्ग मैंने प्ले किया है दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है. जी बिल्कुल, ये पाकिस्तानी फिल्म है. पाकिस्तानी फिल्म इसमें ये मीरा के ऊपर, मतलब मीरा है एक्टर, इसके अंदर पाकिस्तान की मोस्ट फेमस एक्टर हैं ये भी. और फिल्म घर कब आओगे तकरीबन ये 90 की कुछ की फिल्म है, मतलब के 98 या फिर 97 में, मतलब ये फिल्म बनी है इनकी 1998-97. आप सब भी इसको एंजॉय करें, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ सॉन्ग. अच्छा, इसका एक जो सॉन्ग है इंडिया में भी बना है, तो मोस्ट लोग समझते हैं ये इंडियन सॉन्ग है. ये इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी सॉन्ग है. पहले पाकिस्तान ने बना है, इंडिया ने इसकी कॉपी की.

मजे के जनाब आप लोग सुन रहे थे दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। ये फिल्म है ये घर कब आओगे, पाकिस्तानी फिल्म है और ये मैं मुझे सन याद नहीं आ रहा, बड़ी अच्छी फिल्म है ये और इसकी कहानी स्टोरी बड़ी अच्छी है। अगर आप लोगों को मौका मिले तो जरूर देखिएगा ये फिल्म आप लोग। इसका एक सॉन्ग मतलब ये सॉन्ग यही सॉन्ग इंडिया में कॉपी किया गया था तो आज तक लोग यही समझते हैं कि ये शायद इंडियन सॉन्ग ही, लेकिन ये पाकिस्तानी पहले पाकिस्तान में बना उसके बाद इंडिया में बना है। ऐसे बहुत से सॉन्ग हैं वक्तन फक्तन में हर सैटरडे संडे ऐसे कोई ना कोई सॉन्ग लेकर जरूर आएंगे जो इंडिया में कॉपी किए गए कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं थी। हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स एक्टर्स बहुत टैलेंटेड थे और हमारे पास राइटर्स की भी कमी नहीं थी, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हमारे होते हैं जो फिल्म निगार हैं मतलब कि फिल्म लिखते हैं, ड्रामा निगार जो है ड्रामे लिखते हैं, बहुत टॉप पे जाते थे और उसी की अक्सर कॉपीज इंडिया में होती थी, कॉपी करते इंडिया वाले। खैर वो चलता रहता है, फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है कॉपी, कभी कभी ना कहीं ना कहीं किसी ने किसी को कॉपी करते। अच्छा जी टाइम हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप लोगों के साथ कंटिन्यू करती हूँ आवाज़ का रिश्ता। तब तक के लिए मुझे छोटा सा ब्रेक लेना

0: 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: GA FM 88
3: Sindh ki awaaz.
1: Sona sirf zevar nahi har ghar ki amanat hoti hai. Isiliye Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड में साबित लागू है
4: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं
5: 44 سالن جو تجربو ہزاری مریضن جو اعتماد آغا ہومیوپیتھک کلینک ہومی ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد 44 سالن جی وسیع تجربے سان ہر قسم جا اعصابی امراض جوڑن جو سور میدے میں جلن گیس بدہضمی تیزابیت گردن جی پتھری بواسیر بے اولادی وارن جو کرن گنج پن فالج خارش ایں بین مختلف صحت جی تکلیفن لائے ماہرانہ ہومیوپیتھک صلاح ایں مؤثر علاج فراہم کرے आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर पुलिस हेडक्वार्टर चौक पुलिस लाइन सखर टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबह 10 AM का शाम 5 PM ताई अपॉइंटमेंट आई वधिक मालूमात लाए हियरी राब्तो करियो 03-26-22-00-440
6: हेल्थ इज वेल्थ जहां माहिर डॉक्टर्स शेयर करते हैं सेहत की असली बात GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो होस्ट आगा जब्बार के साथ जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें आगा जब्बार 03-00-93-12-700
2: GA FM 88
3: सिंध की आवाज

लिसनर्स, हम लोग शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आ चुके हैं जी बिल्कुल, और प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। तो थोड़े बहुत कुछ कमेंट्स आ चुके हैं हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स ने भेजे हैं, वो मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोग्राम में शामिल करूँ, क्योंकि उनकी कुछ फरमाइश है, सॉन्ग्स हैं वो प्ले करें, लेकिन मुझे एक समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ भैया आप ज़रा सही से लिख कर भेजें तो शायद मैं समझ जाऊँ। अच्छा जी, तो हमें सबसे पहले जो हमारे लिसनर्स आए थे, ये नज़ीर खोसू साहब हैं बलोचिस्तान, सौबतपुर बलोचिस्तान से ही हमें ज्वाइन करते हैं, और इन्होंने बड़ी अच्छी सी बात लिखी है कि ज़िंदगी का असल मकसद कायनात का असल शऊर हासिल करके है। बेसहारा इंसानों की ज़िंदगी में हौसला पैदा करना और मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। वाह क्या बात है, ये वही बात आ गई ना कि आप ये सारे काम करें, अब ये नहीं सोचें कि आज हम चलो हम इसके कल काम कर देंगे, कल हम इनके काम आ देंगे, क्या पता कल वो वक्त ना आए, वो टाइम ना आए, वो लम्हा ना हो जिस वक्त उसे ज़रूरत थी सहारे की, आपने उसे सहारा नहीं दिया, तो आप सहारा भी दें, सहारा बने कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी सारे मखलूक में से, इतने सारे लोगों में से आपको चुना है, तो खास वजह है ना, वरना उसके इतने सारे लोग हैं अल्लाह पाक अपने मखलूक में से किसी को भी चुन लेता, लेकिन आपको सिलेक्ट कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, इसके साथ ही हैं हमारे साथ अब्दुल रजाक साहब हैं, मोहम्मद खान हैं, कुंभार हलीपोटा स्टाप नस्त मीरपुर खास, अच्छा इन्होंने मीरपुर खास से ही हमारा शो सुन रही हैं। अच्छा जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुन रही हैं या रही हैं, बहरहाल आपने शायद फरमाइश की है कोई के कोई सॉन्ग आप सुनना चाह रही हैं, लेकिन फौजिया सुमरो का, तो आप मुझे ऐसा करें ये थोड़ा सा सही से लिख कर भेजें, मुझे समझ नहीं आ रहा सॉन्ग आप कौन सा कह रहे हैं, क्योंकि जो सॉन्ग वहाँ मैं सर्च कर रही हूँ ये आ नहीं रहा है वहाँ पर, तो आप मुझे काइंडली एक बार फिर से मैं लिख कर सेंड कर दें तो मैं ईजिली इसको ढूंढ लूँगी। तो इसके साथ ही एक और अच्छा सा ट्रैक मैं प्ले करने जा रही हूँ, राहत फ़तेह अली ख़ान की इस खूबसूरत सी आवाज़ में तेरे बिन छीना जी, बिल्कुल ये मायरा खान की फिल्म का सॉन्ग है, बिन रोए फिल्म का ये सॉन्ग था, आई थिंक शायद ये वही है, तो मैंने प्ले कर दिया है आवाज़ के रिश्ते में, आप लोग इंजॉय करें। आवाज़ के रिश्ते में एक और सॉन्ग में प्ले कर चुकी, एक आवाज़ आप लोग की खिदमत में पेश कर चुकी हूँ राहत फ़तेह अली ख़ान की खूबसूरत सी आवाज़ में, ये पाकिस्तान के टॉप सिंगर, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करें इनको। और मुझे ज़रूर बताएं कि कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त जब आपने सोचा कि ये काम आज नहीं करना और कल कर लेंगे, फिर वो कल नहीं आता, वो वक्त नहीं आता, वो लम्हा नहीं आता, क्या ज़िंदगी वाकई किसी को मौका देती है? मेरे ख्याल से ज़िंदगी कभी किसी को मौका नहीं देती, आज तक तारीख में कभी किसी को ऐसा मौका नहीं मिला, तारीख की किताबें पढ़ लें ऐसा कोई नहीं है। इंजॉय करें राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ को, आवाज़ का

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: बरसा आबगादी हमलों छह पुलिस अहलकार समेत 12 जना जख्म शहीद पंटी खा जख्म आबगादी बम्बार बारूद से भरल गाड़ी के दराजदा में अमुन मेला चेक पोस्ट से टकरायो शहीद में छह पुलिस अहलकार एक कस्टम ऑफिसर एक बार भी शामिल जख्म के खड़ी वेंदड़ एम्बुलेंस से फायरिंग बस रजाकार शहीद टे जख्मी सिक्योरिटी फोर्स इलाके में पहुंची सर्च ऑपरेशन शुरू कर छो सदर आसिफ अली जरदारी बलोचिस्तान के शहर डेरा बुगटी में जिले चेयरमैन के घर से हमलो जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मार छह गिरफ्तार अमन फौज जो एक रजाकार शहीद 3 जख्मी थी थिया दुखी में रोड तमीर कंदड़ कंपनी के कैंप से दहशतगर्द जो हमलो अरण पोरे अगवा फायरिंग की डेवट दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद बो जख्मी
2: सुहेल खान अफरीदी तरीके इंसाफ के अंदर अपनी साख खो चुके हैं इन्होंने मायूस किया है अपने कारकुनान को भी अपनी पार्टी को भी इनके पास अब जवाब नहीं है कि ये सियासी तौर पे लीड कर सकें और आप 5 अक्टूबर की डेट दें या 5 अक्टूबर 2028 की डेट दें अब आपकी किसी डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी बुजदिली आपकी काहली आपकी सियासी नाअहली इंतजामी नाअहली तो थी मगर आपकी सियासी नाअहली भी अब साबित हो चुकी है और सियासी तौर पे कोई मोबिलाइजेशन नहीं है केपीके के अंदर हमने तो हिज्जे मातकदम तैयारी की कि आएंगे तो हमने अपने शहर का अपने शहरियों का तहफ़ करना है मगर ये बुजदिल ना है लोग जिनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा ये अपनी सियासी साख मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं मगर सियासी तौर पे जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि सुहेल खान अफरीदी की रिट अपनी पार्टी पे खत्म हो चुकी है इतनी सियासी कमजोरी कभी भी नहीं देखने में आई थी इन 13.5 साल में जितनी आप देखने में आई है
1: पीटीआई जो 27 सितंबर वारो मार्च खोटियो जबल निकतो को साबित थियो आए सुहेल अफरीदी पहिरें इंतज़ामी सतह ते नाकाम हो हाणे सियासी सतह ते बि फेल थियो आए सुध समा वारे वफ़ाकी वज़ीर अता ताड चयो आहे त सुहेल अफरीदी पंहिंजी पार्टी तां रिट ख़तम थी वई आहे पीटीआई जो दहशतगर्दनि सां बि गठ जोड़ आहे जंहिं सबब हमलनि जी मज़बत बि नाहे कंदी अख़्तियार वली चयो त पीटीआई खे लॉन्ग मार्च खां भॼणो ई हो त ऐलान छो कयो

आहिनि त पहिरें छो न थियूं कयूं वञनि। केपी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी वफ़ाक़ी हुकूमत ॻाल्हियुनि जी आछ करे छॾी। पिशावर में सीनियर साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे सोहेल आफरीदी चयो त लॉन्ग मार्च में अञा 7 ॾींहं आहिनि, पोइ बि ॻाल्हियूं ई थियणियूं आहिनि त हाणे छो न थियूं कयूं वञनि। ॻाल्हियुनि लाइ पहिरें बि तयारु हुआसीं, हाणे बि आहियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत असांजे एस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हि थियण न ॾेई रही आहे। मुल्क में हिकु शख़्स जी ॻाल्हि हले थी जंहिंजो नुमाइंदो मौसम नक़वी आहे।

केस में नामजद ऐं पीए जी गिरफ़्तारी लाइ पुलिस खे स्पीकर खां इजाज़त वठणी पवंदी। वफ़ाक़ी गरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी के पी असेंबली जे लिखियल ख़त ते तनक़ीद। मोहसिन नक़वी के पी असेंबली जो लेटर जारी कंदे चयो आहे त जेकॾहिं को एम पी ए कंहिं माण्हू खे क़तलु करे छॾे त छा पुलिस खेसि गिरफ़्तार करण खां अॻु बि स्पीकर जी इजाज़त जो इंतज़ार कंदी। कानून जे नज़र में सभिनी जे बराबरि हुजण जो हीउ हिकिड़ो मिसाल आहे। वाह वाह जारी रखो। छा हिन खे रियासत मदीना चयो वेंदो?

बे कानून हथ में खणण ऐं फसाद करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। सिंध हुकूमत हर साज़िश खे नाकाम बणाईंदी। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त इल्ज़ाम हणण ऐं सियासी पॉइंट स्कोरिंग बदिरां मसइलनि जे हल ते ध्यानु ॾियणु घुर्जे। जलसनि ऐं जलूसनि जी इजाज़त हुजणु घुर्जे। अवाम खे परेशान न थियणु घुर्जे। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कराची यूनिवर्सिटी रोड ते ठहंदड़ रेड लाइन बीआरटी मनसूबे जो मौसमियात फ्लाई ओवर जो बि इफ़्तिताह कयो।

मुख्य जवाबदार गिरफ्तार करने की दावा डीआईजी एसएसपी हैदराबाद असद धमाच नरेश के कत्ल किया नरेश कुमार जा वकास मुगल डा घना पैसा रहन हुआ वकास मुगल असद धमाच के 10 लख जो आसरो दई नरेश के कत्ल कराया एक जवाबदार फरार है। कराची के दखण जिले में रात शहीद थियल पुलिस अहलकार वाले वाके में आला पुलिस ऑफिसर की गफलत साबित शेरीन जना कॉलोनी में पुलिस अहलकार की शहादत से डीआईजी दखण असद रजा एसएसपी महरोज अली की कारकर्दगी से सवाल उथारे छाया गरु वजीर ज़ियाल अंजार के हुक्मन के नजरअंदाज करने के भी मामूल बनाए छो शहीद अहलकार के गरु वजीर पारा तय थियल एसओपीज के नजरअंदाज कर मंशियात फरोशन की गढ़ में मोकलने इंकशाफ तय थियल एसओपीज मुकम्मल तौर से नजरअंदाज किया।

सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में दरियाहनि के आलमी दिहाड़े से सिंधु के तहफ़ुज़ लाइ तकरीबू ए रैलियूं एसयूपी पारा सिंधु तोमे साह मुझो जुनवान सा ठुल बाडर कोटड़ी ढोरो नारो सकरन सेवन नवाब अली मोहम्मद जोही डोकरी झंडो मरी बेन शहर में मुशायरा छठे में भी दरियाहनि के आलमी दिहाड़े से झिरक पुल वट सिंधु दरिया के भेटा पेश की हुई अगवाणन सिंधु से धाड़ो कें भी सूरत में कबूल न कबो

चंडो आदम में सिंध जी इम्कानी विरहांगे ऐं पाणी ते धाड़े खिलाफ़ अवामी तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक जी रैली अवामी तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक पारां लतीफ़ गेट खां एहतजाजी रैली कढी प्रेस क्लब वारो धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो त सिंध जी वहदत ख़िलाफ़ साज़िशनि खे नाकाम बणायो वेंदो, पाणी ज़मीननि ऐं वसीलनि ते कब्ज़ा क़बूल न आहिनि।

2024 में सिंध पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती लाइ टेस्ट पास उम्मीदवारों जो एहतजाज उम्मीदवार जो चवण हो तो अस आईबीए की लिखित वाली टेस्ट और इंटरव्यू में पास थे हुआस पर वेटिंग में रखो वो एहतजाज कर चूंडियल नुमाइंदन के दाह बावजूद असा अजा तर्ती न किया वो है।

आदण में जामशरो लाड़काणे रेलवे लाइन ते रेल गाॾियुनि जी बहाली लाइ शहरनि जो धरणो सियासी समाजी धुरनि राधन रेलवे स्टेशन ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हुयो मुज़ाहिरनि मूजिब रेल गाॾियूं बंदि थियण सां लखे माण्हू सफ़री सहूलियतुनि खां महरूम थी विया आहिनि ओड़ेतुनि खां रोज़गार बि खसजी वियो आहे रेल गाॾियूं बहाल कयूं वञनि।

0: खैरपुर में रेलवे स्टेशन वट माल गाड़ी जो एक गाड़ो पटरी तक लही वो फाटक बंद रुकमान फाटक वट पंजाब का कराची इंदड़ माल गाड़ी जो गाड़ो पटरी तक लही वो बोगी पटरी तक लहन सबब केतर ही रेलगाड़ियों के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन से बिहार वो मुसाफिर सख्त परेशान।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज

वॉइस रिक्वेस्ट पर वॉइस के रही हूँ। चलें जी, कभी आप भी सिंगिंग करते हैं कि अगर सिंगिंग करते हैं ज़रूर बताइएगा, जब मैं कभी कॉल का सेगमेंट रखूँगी प्रोग्राम में। तो जी बिल्कुल, ये एक तुर्किश सॉन्ग मैंने प्ले कर दिया है और मैंने इसको खुद भी घर पर पर्सनली सुना था। म्यूजिक इससे अच्छा, इसकी टोन बहुत अच्छी, सैड सा सॉन्ग है लेकिन अच्छा है। अच्छा, हम इसे सॉन्ग कहने लगे, मैं इसकी डिटेल में गई तो उनके मतलब वहाँ पर ये एक सूफी कलाम

जी मैंने प्ले कर दिया है, इंजॉय करें। साथ में इनके कमेंट भी शामिल करते हैं, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिंधी सिस्टर कोमल। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद करती हूँ। खिलना है और तहार प्रोग्राम बेहतरीन हली रहे। और चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पसंद किया प्रोग्राम को। आप लोग की पसंद है तो हम बार बार आते हैं ना बस, और आप लोग भी इसी मोहब्बत चाहत में आते हैं हमारी भी, और ये तमाशनी सफर से हमें सुन रहे हैं।

0: की समातों के नजर किया था, मेरे साथ आप लोगों ने भी आप इंजॉय किया होगा बहुत अच्छे से। तो जी बिल्कुल इस वक्त टाइम हो गया, आपको पता टाइम की बात मैं क्यों करती हूँ, मेरे तमाम लिसनर्स को पता है कि टाइम हो गया 6:30 और अब मुझे लेना एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे आवाज का रिश्ता प्रोग्राम, आवाज का रिश्ते में टाइम हो चुका है एक ब्रेक का।
1: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए, आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्श ब्यूटी क्रीम
3: GA FM 88
4: सिंध की आवाज।
5: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें, शराइत और जवाबित लागू हैं।
6: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिंदी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: This program is brought to you by
5: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
8: Har din har pehar zindagi ki lehar, GFM 88 network, Sindh ki awaaz.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पड़ेगा आप लोगों का, क्योंकि बोलेंगे कोमल ब्रेक बहुत लेती है, भाई ब्रेक लेना भी मेरे लिए जरूरी है, ब्रेक नहीं लूंगी तो बस फिर क्या फायदा, आप लोग फिर बोर हो जाएंगे ना कि सिर्फ बोलती रहती है, आप लोग ही बोला करें। और आप लोगों से एक बात भी कहूंगी कि आप लोग मुझे जो है ना लाजमी कोई टॉपिक बताया करें कि भाई मैं नेक्स्ट टॉपिक आपकी पसंद का भी ला सकती हूँ, ताकि हम लोग इसको अपने लिसनर्स के साथ, अपने जो है सुनने वाले हैं, सामीन हैं, चाहने वाले हैं, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करेंगे, उसके बहुत से पॉइंट्स, हमें बहुत सी बातें हर चीज़ की पता चलती हैं। कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं मैं रखूँ तो नेक्स्ट फनी होना चाहिए, या फिर कोई वैसा टॉपिक हो सैड सा, या फिर कोई एक उसके अंदर नसीहत हो, जैसे आज मैंने एक टॉपिक रखा था। तो ऐसी बहुत सी बातें मेरी नज़र से गुजरती हैं, मेरी नज़र से भी नज़म गुजर गई, तहरीर गुजर गई, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। और तो ऐसे ही आप लोग मुझे मेरे साथ साथ रहा करें, मुझे बताया करें कि आप लोगों को प्रोग्राम में कौन सी बात अच्छी लग रही है, कौन सी समझ नहीं आ रही, ताकि मैं उसको और बेहतर तरीके से आप

0: 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: GA FM 88.
3: Sindh ki awaaz.
1: Sona sirf zevar nahi har ghar ki amanat hoti hai. Isiliye Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1114752642 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत और जवाबित लागू हैं
4: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम

ईरान पारां समुंड में अमरीकी जासूस आबदोस के हथ करण जी दावा वीडियो पे जारी कई वई। ईरानी अख़्तारनि मूजिब अमरीकी जासूस आबदोस के सालिम हालत में हथ पियो वियो आहे। अमरीकी आबदोस ईरानी समुंड में बारूदी सुरंगनि बाबति जासूसी करे रही हुई। पकड़ियल अमरीकी जासूस आबदोस जी मालियत $10 मिलियन आहे।

खे भी कानून हथ में खणण ऐं फसाद करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। सिंध हुकूमत हर साज़िश खे नाकाम बणाईंदी। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील महमद चयो आहे त इल्ज़ाम हणण ऐं सियासी पॉइंट स्कोरिंग बदिरां मसइलनि जे हल ते ध्यानु ॾियणु घुर्जे। जलसनि ऐं जलूसनि जी इजाज़त हुजणु घुर्जे। अवाम खे परेशान न थियणु घुर्जे। सीनियर वज़ीर शर्जील महमद कराची जे यूनिवर्सिटी रोड ते ठहंदड़ रेड लाइन BRT मनसूबे जी मौसमियात फ्लाईओवर जो इफ़्तिताह बि कयो। पाकबेरिया जे अब्दोज हिंगोर पारां अरबी समुंड में पहिरीं लाइव वेपन फायरिंग जो कामयाब तजुर्बो। PNSM हिंगोर डिघी मुफ़ासिले ताईं मार कंदड़ एंटी शिप क्रूज मेज़ाइल कामयाबी सां फायर कयो। ISPR मूजिबि एंटी शिप क्रूज मेज़ाइल हदफ़ खे कामयाबी सां निशानो बणायो। पाकबेरिया जे सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ़ लाइव वेपन फायरिंग जो मुशाहिदो कयो। नेवल चीफ हिंगोर अब्दोज जंगी सलाहियत ऐं हमले जी पेशेवरानी महारत जी वाखाण कई।

हैदराबाद में व्यापारी नरेश कुमार के पैसन की लेती लेती से कत्ल करने जो इंकशाफ पुलिस पारा बल मुख्य जवाबदार गिरफ्तार करने की दावा डीआईजी एसएसपी हैदराबाद है तो जवाबदार के टंडो जाम टंडो अलहार में गिरफ्तार किया है लेती लेती से वकास मुगल और असद धमाच नरेश के कत्ल किया नरेश कुमार जा वकास मुगल डां घना पैसा रहा हुआ वकास मुगल असद धमाच के धन रखने आसरो नरेश के कत्ल कराया

जावल जोड़े जो में खुशदार का पोतल नौजवान पुराने तकरार ता जाल लाडो गोलियों हणी कतल भंड चौक ते हथियारबंदन पुराने तकरार ता अलाबख्श बलेदिया के कतल कयो नौ देरो वेजो औरत घर अंदर गोली लगन सबब मारजी वई भुट्टो फारम में नाहिद जाल नदीम खकरानी गोली लगन सबब कतल थी वई औरत जे सस मूजिब नाहिद जो डेर पिस्टल साफ करे रहे हो तो ओचितो फायर थियण सबब केस गोली लगी पुलिस मूजिब औरत जो पोस्टमार्टम करायो वियो आहे बाक़ी जी वधीक जांच कई वञे।

0: धड़ो में गुजरियल रात हथियारबंदनि जी फायरिंग में कतल थियल 15 वरनि जी निंगरीअ जो लाश रखी धरणो वारसन सवें शहरनि मकतूल निंगरी मुर्क मेमन जो लाश पिंजारी पुल चौक ते रखी धरणो हुयो। मुज़ाहिरनि जो बिना देर निंगरी जे कतल में मुलज़िम जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। आदम में सिंध के इम्कानी विरहांगे ए पानी के धाड़े खिलाफ अवामी तहरीक ए सिंधियाणी तहरीक की रैली। अवामी तहरीक ए सिंधियाणी तहरीक पारा लतीफ गेट का एहतजाजी रैली कड़ी प्रेस क्लब आदो एहतजाज कर अगवाणों को चवण हो तो सिंध की वहदत खिलाफ साजिश के नाकाम बनाया वो पानी जमीन ए वसीलन से कब्जा कबूल ना है। लाड़काने में 2024 दौरान सिंध पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती लाइ टेस्ट पास उम्मीदवारों को एहतजाज। उम्मीदवारों को चवण हो तो अस आईबीए की लिखित वाली टेस्ट इंटरव्यू में पास थे हुआसी पर वेटिंग में रखो वो एहतजाज कर चूंडियल नुमाइंदन के दायण बावजूद असा के अजा तक भर्ती न कर खैरपुर में रेलवे स्टेशन वट माल गाड़ी जो एक गाड़ो पटड़ी तक लही वो फाटक बंद। लुकमान फाटक वट पंजाब का कराची वेंदड़ माल गाड़ी जो गाड़ो पटड़ी तक लही वो बोगी पटड़ी तक लाइन सब केतर रेलगाड़ियों के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन से रोको वो मुसाफिर सख्त परेशान।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: कुछ करे कमेंट, बातें तेरी दिल पे ना देती मेरे गेंद, ना करू तुझे ब्लॉक ना करू तुझे बैन, तू ना मेरा हेटर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है.
3: सुनते रहो GFM 90.8.
4: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में. सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर.
5: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया जी एफ एम नेटवर्क सिंध राउंडअप सां गॾु मां गुलाब खान भेण.

सिंध राउंडअप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज़ हलाईंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो सख़्तु फ़ैसिलो। बाबा जे कातलनि खे छो बचाई, नवाब शामी नौजवान आपघात करे छॾियो। सिंध सरकार ऐं ADP मी कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ऐं स्कूलनि जी अॾावत ते इतफ़ाक़। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसुनि जी ख़रीदारीअ जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध जे 5 साहिली ज़िलनि में 2.5 लख शागिर्दनि खे मांझांदो कराइण जो ऐलान, एग्रीमेंट थी वई। सिंध हुकूमत पारां रिटायर्ड कामोरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जो हुकुम। शागिर्दनि जो सिंध हुकूमत खे अल्टीमेटम, मेरठ जे बहालीअ जे लाइ शागिर्दनि जो 9 अक्टूबर ते हैदराबाद खां कराचीअ ताईं प्यादल लॉन्ग मार्च जो ऐलान। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, सिंध जे 3 वॾनि डिवीज़ननि में कलम 144 लागू, अमन अमान या सियासी एहतियात। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज़ ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फ़ैसिलो, NCCIA खां मदद तलब। उन हवाले खां काल्ह सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जे सदारत हेठि इतलात खाते जो अहम इजलास थियो, जंहिं में इतलात वारे सेक्रेटरी काशिफ गुलज़ार शेख ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास दौरान फेक न्यूज़, कूड़ी ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात जी रोकथाम, जदीद टेक्नोलॉजी ज़रिए मीडिया मॉनिटरिंग ऐं सिंध हुकूमत जे मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर बनाइण बाबति अहम फ़ैसिला कया विया। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण हिदायत कई फेक न्यूज़ जी रोकथाम जे लाइ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खां सहकार हासिल कयो वञे। फेक न्यूज़ ठाहींदड़नि ऐं पखेड़ींदड़नि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जे लाइ लाॻापियल इदारनि सां मौसर सहकार खे वधीक वधायो वञे। हुन चयो त कूड़ियुनि ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात ज़रिए कंहिं बि शख़्स या इदारे खे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश बर्दाश्त न कई वेंदी। हुन इतलात वारे सेक्रेटरी ऐं समूरनि शोबनि जे डायरेक्टरनि खे हिदायत कई त मेन स्ट्रीम ऐं सोशल मीडिया ते जदीद टेक्नोलॉजी जे मदद सां फेक न्यूज़ जी रोज़ानी बुनियाद ते मॉनिटरिंग कई वञे। हुन चयो त फेक न्यूज़ जे बरवक़्त निशानदही, तस्दीक ऐं तदारुक जे लाइ इतलात खाते में हिकु मौसर ऐं मरबूत मॉनिटरिंग निज़ाम जोड़ियो वञे, जॾहिं त फेक न्यूज़ जे तदारुक लाइ इतलात खाते ऐं NCCIA विच में सहकार खे वधीक मज़बूत बणायो वञे। हुन चयो त सिंध हुकूमत जो बयानियो अमन, रवादारी, बेनल सूबाई हम आहंगी ऐं क़ौमी इतिहाद ते ॿधलु आहे। हुन हिदायत कई त सिंध हुकूमत जे हिन मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर ऐं मज़बूत बणाइण लाइ इज़ाफ़ी क़दम खया वञनि। इतलात खातो डिजिटल प्लेटफॉर्मनि मां भरपूर फ़ाइदो वठंदे सिंध हुकूमत जे मुस्बत क़दमनि ऐं अवामी भलाई जे मनसूबनि खे मौसर अंदाज़ में उजागर करे। हुन हिदायत कई त मुआशिरे जे समूरनि तबक़नि जे नुमाइंदनि खे सिंध हुकूमत जे बयानीअ जो हिसो बणायो वञे। इतलात खातो फेक न्यूज़ जी मॉनिटरिंग सां गॾोगॾु सिंध हुकूमत जे मुस्बत बयानीअ जी मौसर तशहीर ते पिणु ख़ासि ध्यानु ॾिए। नवाब शामी 24 सालनि जे नौजवान दीदार भंगवार पंहिंजी अमड़ सदोरीअ सां कावड़ जी पाण मथां पिस्टल जा फायर करे ख़ुदकुशी करे छॾी। 9 महीना अॻु दीदार जो वालिद गुलमोहम्मद भंगवार मोरो भरिसां क़तलु थियो हुयो। काल्ह सुनवाई दौरान जवाबदार मौलाबख्श भंगवार पेश थियो। केस जी फरियादड़ मुस्मान सदोरी अदालत में बयान मटाए चयो त मौलाबख्श कातिल न आहे। वाज़े रहे त मौलाबख्श सदोरीअ जो सॻो भाउ ऐं मक़तूल दीदार जो मामू हो। होॾां दीदार भंगवार जे भाउ परवेज़ भंगवार चयो त मुंहिंजी अमड़ बाबा जे कातिल खे बचायो, जेको मुझे अमर जो भा हो, उन इतां भा नाराज़ थी खुदकुशी कई। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं एशियाई तरक़ियाती बैंक में सिंध जे सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ते इतफ़ाक़। काल्ह ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त ADB जे माली मदद सां हलंदड़ SSAIP तहत 10 नवां अॼियल सेकेंडरी स्कूलनि जूं इमारतूं मुकमल कयूं वियूं आहिनि, जॾहिं त सिंध जे 10 ज़िलनि में 116 जदीद सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक अॾिया वेंदा। डिसंबर ताईं 200 खां वधीक स्कूल ऐं ईंदड़ महीननि में मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि तहत 800 खां वधीक स्कूल मुकमल करण जो पको इरादो
इरादो रखूं था जॾहिं पंजनि अहम मनसूबनि में 2630 सेकेंडरी स्कूल जे उस्तादनि जी तरबियत मुकमल कई वई आहे। सूबे जे 7 तालीमी बोर्डनि में इम्तिहानी सुधारा लागू कया विया आहिनि। इजलास में कराची सर्कुलर रेलवे लाइ टर्म्स ऑफ रेफरेंस खे हतमी शिकिल ॾियण, ज़मीन जी दस्तियाबी जी तसदीक ऐं प्रोजेक्ट डिज़ाइन जे कम खे अॻिते वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसुनि जी ख़रीदारी जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। उन हवाले सां सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट जे निज़ाम खे वधाए रही आहे। असांजी कोशिशि आहे त जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत रुॻो कराचीअ ताईं महदूद न रहे। नवनि रूटनि जो मक़सदु शहरनि खे सस्ती ऐं बहितर सफ़री सहूलियत ॾियणु आहे। हुन चयो त 50 डबल डेकर बसूं 30 नवंबर ताईं कराची पहुची वेंदियूं, जिन खे मुख़्तलिफ़ रूट्स ते हलायो वेंदो। डबल डेकर बसुनि सां मुसाफ़िरनि खे इज़ाफ़ी सफ़र जी गुंजाइश मिलंदी। हुन चयो त लाड़काणे कंबर शहदादकोट में पीपल्स बस सर्विस शुरू करण सां आवाम तरफ़ां भरपूर मोट मिली रही आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं ख़ुराक वारे आलमी इदारे WFP में स्कूलनि में शागिर्दनि खे मानी खाराइण, ग़िज़ाइत, मौसमियाती लचक, अॻुवाट हिफ़ाज़ती क़दमनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ जे शोबे में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध पाइदार स्कूल खाधो प्रोग्राम इजलास जो मर्कज़ रहियो। उन प्रोग्राम जे लाइ लॻभॻ $80 million जी ग्रांट फ़राहम कई वई आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त सिंध जे 5 ज़िलनि खियामाड़ी, मलीर, सिजावल, ठटे ऐं टंडो मोहम्मद खान जे 1336 सरकारी स्कूलनि जे 2.5 लख शागिर्दनि खे लंच फराहम थींदी। सेव दी चिल्ड्रन इंटरनेशनल पारां सिजावल, ठटे ऐं टंडो मोहम्मद खान में प्रोग्राम ते अमल दरामद कंदो। खियामाड़ी ऐं मलीर में WFP जो प्रोग्राम 614 स्कूलनि जे 1 लख शागिर्दनि खे 5 सालनि दौरान फ़ाइदो पहुचाईंदो। प्रोग्राम तहत स्कूलनि में खाधे जी फराहमीअ सां गॾु वाश सहूलियतुनि जी बहाली, ग़िज़ाइत बाबति तालीम, ख़ुराक जे तहफ़ुज़ ऐं सफ़ाई, ॿारनि जे तहफ़ुज़ ऐं तालीमी सरगर्मियुनि खे हथी ॾियणु शामिल आहे। इजलास में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम लाइ WFP जे सहकार, माउ ऐं ॿार जी ग़िज़ाइत, शदीद ग़िज़ाई खोट जी कम्यूनिटी सतह ते इंतज़ाम ऐं मौसमियाती लचक बाबति मनसूबनि जो पिणु जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त ख़ुराक, ग़िज़ाइत ऐं इंसानी सरमाए जी तरक़ी पायदारी तरक़ीअ जा बुनियादी थंभ आहिनि। स्कूल खाधो प्रोग्राम ॿारनि जे मुस्तक़बिल में सीड़पकारी आहे। ग़िज़ाई खोट खे मोह ॾियण ऐं स्कूलनि में ॿारनि जी हाज़िरी बहितर बनाइण जे लाइ सिहतमंद ऐं ख़ुशहाल सिंध जो बुनियादु रखियो पियो वञे। सिंधु हुकूमत पारां सरकारी गाॾियुनि जी गैरक़ानूनी इस्तेमाल ऐं कब्ज़े ख़िलाफ़ु हिकमत अमली तयारु करे वरिती आहे। खातनि मां बदिली या रिटायर थींदड़ ऑफिसरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जे लाइ लाॻापियल खातनि खे हिदायतूं जारी कयूं वियूं आहिनि। उन हवाले सां काल्ह क़ानून खाते पारां समूरनि सरकारी खातनि जे सेक्रेटरियुनि खे ख़त लिखी खेनि हिदायत कई वई आहे त गैर लाॻापियल ऐं गैर क़ानूनी तौर ते गाॾियूं इस्तेमालु कंदड़ ऑफिसरनि खां गाॾियूं वापसि वरितियूं वञनि। खाते खे उहा बि हिदायत कई वई आहे त सरकारी गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन, मौजूदा लोकेशन ऐं लाॻापियल ऑफिसरनि जी अपडेट लिस्ट तयारु कई वञे। सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी 9 अक्टूबर ते कराचीअ ॾांहुं प्यादल लॉन्ग मार्च करण जो ऐलान करे छॾियो। सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जे कन्वेनर ज़ुबी अला मस्तोई, फ़खुर ज़मा खुहारो ऐं ॿियनि हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सदन जिदोजहद खे 65 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, जॾहिं त एहतजाजी कैंप बि 65 ॾींहं गुज़रण बावजूदु जारी आहे। हुननि चयो त मशल बरदार रैली नसीम नगर चौक खां SPPS जे साम्हूं एहतजाजी कैंप ताईं कढी वई, जॾहिं त मेरिड जे जनाज़े जी रैली पिणु कढी वई। हाणे 9 अक्टूबर ते जुमे जे ॾींहुं कराची जे तरफ़ प्यादल मेरिट लॉन्ग मार्च कयो वेंदो। हुन चयो त लॉन्ग मार्च कराची पहुची CM हाउस तरफ़ वेंदो ऐं उते एहतजाज कयो वेंदो। लॉन्ग मार्च दौरान खेनि कुझु बि थियो त उनजी ज़िमेवार सिंधु हुकूमत हूंदी, जॾहिं त ईंदड़ हिकमत अमली कराचीअ में लॉन्ग मार्च दौरान तय कई वेंदी। हुन चयो त सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जो प्यादल लॉन्ग मार्च हैदराबाद मां निकिरंदो ऐं टंडो मोहम्मद खान, झिरक ऐं ठटे खां थींदो कराची पहुचंदो। हुन चयो त जेकॾहिं सिंधु हुकूमत सदन समूरा मुतालबा मञी वठे थी त लॉन्ग मार्च रोके सघे थो। एडवोकेट इज़हार हुसैन चांग चयो त सॼी सिंध जा वकील पहिरें ॾींहं खां शागिर्दनि सां गॾु आहिनि ऐं शागिर्दनि जे हर फ़ैसिले मार्च ऐं एहतजाज में साणनि गॾु हूंदा।

0: पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु हुकूमत कराची, हैदराबाद ए सखर डिवीजन में 25 खां 30 सितंबर 2026 तई कलम 144 लागू करे छड्यो आहे। हुकूमत तहत 5 या वधीक माण्हुनि जे गॾु थियण, एहतजाजी रैलियुनि, जलसनि ऐं जुलूसनि ते पाबंदी हूंदी। हुकूमत जो मौक़िफ़ु आहे त हीउ क़दम अमन अमान बरक़रार रखण ऐं कंहिं बि अणवणंदड़ सूरत हाल खां बचण लाइ खयो वियो आहे। पर हिन फ़ैसिले सां गॾु केतिरा ई अहम सवाल बि साम्हूं आया आहिनि। सियासी ऐं समाजी हलकनि जो चवणु आहे त जेकॾहिं वाकई को मखसूस सिक्योरिटी ख़तरो मौजूदु आहे त उन बाबति अवाम खे वाज़े ॼाण ॾिनी वञे। रुगो आम पाबंदी लॻाइण सां बेयकीनी ऐं मुंझारो वधी सघे थो। सिंध में हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ सियासी धुरियूं एहतजाजनि जी तयारी करे रहियूं आहिनि, जॾहिं त क़ौम परस्त जमायतूं बि पंहिंजे मुतालबनि जे लाइ मुज़ाहिरनि जा ऐलान करे चुकियूं आहिनि। अहिड़े पस मंज़र में कलम 144 खे कुझु हल्का सियासी छिकताण सां बि जोड़े रहिया आहिनि, जॾहिं त हुकूमत उनखे ख़ालिस इंतज़ामी ऐं हिफ़ाज़ती क़दम क़रार ॾेई रही आहे। क़ानूनी माहिरनि मूजिबि कलम 144 हंगामी हालतुनि जे लाइ हिकु आर्ज़ी क़ानूनी अख़्तियार आहे, जंहिंजो इस्तेमालु ज़रूरत ऐं तनासुब जे उसूलनि तहत थियणु घुरिजे। पुरमन एहतजाज ऐं तशद्दुद वारी सरगर्मीअ में फ़र्क़ु बरक़रार रखणु बि जमहूरी निज़ाम जो अहम हिसो आहे। हाणे नज़रूं हुकूमत ते आहिनि त छा उहा पाबंदी बाबति वधीक वज़ाहत जारी कंदी या हालतुनि जी बहितरीअ सां उन में नरमी आंदी वेंदी। अमन अमान बरक़रार रखण सां गॾु शहर जे बुनियादी हक़नि जो तहफ़ुज़ बि रियासत जी अहम ज़िमेवारी आहे। हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज़
2: GFM 90.8।

का फर्द था कोई मेहमान तो न था, थी जिनके दम से रोंगटे शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव ये वीरान तो न था।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

0: It's 9 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है.
1: सुनते रहो GFM 90.8.
3: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में. सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर.
4: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां उधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंडअप संगदे माया गुलाब खान बेण.

सिंध राउंडअप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज़ हलाईंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो सख़्तु फ़ैसिलो। बाबा जे कातलनि खे छो बचाई, नवाब शामी नौजवान आपघात करे छॾियो। सिंध सरकार ऐं ADP मी कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ऐं स्कूलनि जी अॾावत ते इतफ़ाक़। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसुनि जी ख़रीदारीअ जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध जे 5 साहिली ज़िलनि में 2.5 लख शागिर्दनि खे मांझांदो कराइण जो ऐलान, एग्रीमेंट थी वई। सिंध हुकूमत पारां रिटायर्ड कामोरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जो हुकुम। शागिर्दनि जो सिंध हुकूमत खे अल्टीमेटम, मेरठ जे बहालीअ जे लाइ शागिर्दनि जो 9 अक्टूबर ते हैदराबाद खां कराचीअ ताईं प्यादल लॉन्ग मार्च जो ऐलान। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, सिंध जे 3 वॾनि डिवीज़ननि में कलम 144 लागू, अमन अमान या सियासी एहतियात। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज़ ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फ़ैसिलो, NCCIA खां मदद तलब। उन हवाले खां काल्ह सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जे सदारत हेठि इतलात खाते जो अहम इजलास थियो, जंहिंमें इतलात वारे सेक्रेटरी काशिफ गुलज़ार शेख ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास दौरान फेक न्यूज़, कूड़ी ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात जी रोकथाम, जदीद टेक्नोलॉजी ज़रिए मीडिया मॉनिटरिंग ऐं सिंध हुकूमत जे मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर बनाइण बाबति अहम फ़ैसिला कया विया। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण हिदायत कई फेक न्यूज़ जी रोकथाम जे लाइ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खां सहकार हासिल कयो वञे। फेक न्यूज़ ठाहींदड़नि ऐं पखेड़ींदड़नि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जे लाइ लाॻापियल इदारनि सां मौसर सहकार खे वधीक वधायो वञे। हुन चयो त कूड़ियुनि ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात ज़रिए कंहिं बि शख़्स या इदारे खे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश बर्दाश्त न कई वेंदी। हुन इतलात वारे सेक्रेटरी ऐं समूरनि शोबनि जे डायरेक्टरनि खे हिदायत कई त मेन स्ट्रीम ऐं सोशल मीडिया ते जदीद टेक्नोलॉजी जे मदद सां फेक न्यूज़ जी रोज़ानी बुनियाद ते मॉनिटरिंग कई वञे। हुन चयो त फेक न्यूज़ जे बरवक़्त निशानदही, तस्दीक ऐं तदारुक जे लाइ इतलात खाते में हिकु मौसर ऐं मरबूत मॉनिटरिंग निज़ाम जोड़ियो वञे, जॾहिं त फेक न्यूज़ जे तदारुक लाइ इतलात खाते ऐं NCCIA विच में सहकार खे वधीक मज़बूत बणायो वञे। हुन चयो त सिंध हुकूमत जो बयानियो अमन, रवादारी, बेनल सूबाई हम आहंगी ऐं क़ौमी इतिहाद ते ॿधल आहे। हुन हिदायत कई त सिंध हुकूमत जे हिन मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर ऐं मज़बूत बणाइण लाइ इज़ाफ़ी क़दम खया वञनि। इतलात खातो डिजिटल प्लेटफॉर्मनि मां भरपूर फ़ाइदो वठंदे सिंध हुकूमत जे मुस्बत क़दमनि ऐं अवामी भलाई जे मनसूबनि खे मौसर अंदाज़ में उजागर करे। हुन हिदायत कई त मुआशर जे समूरनि तबक़नि जे नुमाइंदनि खे सिंध हुकूमत जे बयानीअ जो हिसो बणायो वञे। इतलात खातो फेक न्यूज़ जी मॉनिटरिंग सां गॾोगॾु सिंध हुकूमत जे मुस्बत बयानीअ जी मौसर तशहीर ते पिणु ख़ासि ध्यानु ॾिए। नवाब शामी 24 सालनि जे नौजवान दीदार भंगवार पंहिंजी अमड़ सदोरीअ सां कावड़ जी पाण मथां पिस्टल जा फायर करे ख़ुदकुशी करे छॾी। 9 महीना अॻु दीदार जो वालिद गुल मोहम्मद भंगवार मोरोभर सां क़तलु थियो हुयो। काल्ह सुनवाई दौरान जवाबदार मौलाबख्श भंगवार पेश थियो। केस जी फरियादियुनि मुस्मान सदोरी अदालत में बयान मटाए चयो त मौलाबख्श कातिल न आहे। वाज़े रहे त मौलाबख्श सदोरी जो सॻो भाउ ऐं मक़तूल दीदार जो मामू हो। होॾां दीदार भंगवार जे भाउ परवेज़ भंगवार चयो त मुंहिंजी अमड़ बाबा जे कातिल खे बचायो, जेको मुझे अमर जो भा हो। उन इतां भा नाराज़ थी खुदकुशी कई। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं एशियाई तरक़ियाती बैंक में सिंध जे सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ते इतफ़ाक़। काल्ह ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त ADB जे माली मदद सां हलंदड़ SSAIP तहत 10 नवां अॼियल सेकेंडरी स्कूलनि जूं इमारतूं मुकमल कयूं वियूं आहिनि, जॾहिं त सिंध जे 10 ज़िलनि में 116 जदीद सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक अॾिया वेंदा। डिसंबर ताईं 200 खां वधीक स्कूल ऐं ईंदड़ महीननि में मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि तहत 800 खां वधीक स्कूल मुकमल करण जो पको इरादो
इरादो रखूं था जॾहिं पंजनि अहम मनसूबनि में 2630 सेकेंडरी स्कूल जे उस्तादनि जी तरबियत मुकमल कई वई आहे। सूबे जे 7 तालीमी बोर्डनि में इम्तिहानी सुधारा लागू कया विया आहिनि। इजलास में कराची सर्कुलर रेलवे लाइ टर्म्स ऑफ रेफरेंस खे हतमी शिकिल ॾियण, ज़मीन जी दस्तियाबी जी तसदीक ऐं प्रोजेक्ट डिज़ाइन जे कम खे अॻिते वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसुनि जी ख़रीदारी जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। उन हवाले सां सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट जे निज़ाम खे वधाए रही आहे। असांजी कोशिशि आहे त जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत रुॻो कराचीअ ताईं महदूद न रहे। नवनि रूटनि जो मक़सदु शहरनि खे सस्ती ऐं बहितरु सफ़री सहूलियत ॾियणु आहे। हुन चयो त 50 डबल डेकर बसूं 30 नवंबर ताईं कराची पहुची वेंदियूं, जिन खे मुख़्तलिफ़ रूट्स ते हलायो वेंदो। डबल डेकर बसुनि सां मुसाफ़िरनि खे इज़ाफ़ी सफ़र जी गुंजाइश मिलंदी। हुन चयो त लाड़काणे कंबर शहदादकोट जी पीपल्स बस सर्विस शुरू करण सां अवाम तरफ़ां भरपूर मोट मिली रही आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं ख़ुराक वारे आलमी इदारे WFP में स्कूलनि में शागिर्दनि खे मानी खाराइण, ग़िज़ाइत, मौसमियाती लचक, अॻुवाट हिफ़ाज़ती क़दमनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ जे शोबे में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध पाइदार स्कूल खाधो प्रोग्राम इजलास जो मर्कज़ रहियो। उन प्रोग्राम जे लाइ लॻभॻि $80 million जी ग्रांट फ़राहम कई वई आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त सिंध जे 5 ज़िलनि खियामाड़ी, मलीर, सिजावल, ठटे ऐं टंडो मोहम्मद खान जे 1336 सरकारी स्कूलनि जे 2.5 लख शागिर्दनि खे लंच फराहम थींदी। सेव दी चिल्ड्रन इंटरनेशनल पारां सिजावल, ठटे ऐं टंडो मोहम्मद खान में प्रोग्राम ते अमल दरामद कंदो। खियामाड़ी ऐं मलीर में WFP जो प्रोग्राम 614 स्कूलनि जे 1 लख शागिर्दनि खे 5 सालनि दौरान फ़ाइदो पहुचाईंदो। प्रोग्राम तहत स्कूलनि में खाधे जी फराहमीअ सां गॾु वाश सहूलियतुनि जी बहाली, ग़िज़ाइत बाबति तालीम, ख़ुराक जे तहफ़ुज़ ऐं सफ़ाई, ॿारनि जे तहफ़ुज़ ऐं तालीमी सरगर्मियुनि खे हथी ॾियणु शामिल आहे। इजलास में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम लाइ WFP जे सहकार, माउ ऐं ॿार जी ग़िज़ाइत, शदीद ग़िज़ाई खोट जी कम्यूनिटी सतह ते इंतज़ाम ऐं मौसमियाती लचक बाबति मनसूबनि जो पिणु जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त ख़ुराक, ग़िज़ाइत ऐं इंसानी सरमाए जी तरक़ी पायदारी तरक़ीअ जा बुनियादी थंभ आहिनि। स्कूल खाधो प्रोग्राम ॿारनि जे मुस्तक़बिल में सीड़पकारी आहे। ग़िज़ाई खोट खे मोह ॾियण ऐं स्कूलनि में ॿारनि जी हाज़िरी बहितर बनाइण जे लाइ सिहतमंद ऐं ख़ुशहाल सिंध जो बुनियादु रखियो पियो वञे। सिंधु हुकूमत पारां सरकारी गाॾियुनि जी गैरक़ानूनी इस्तेमालु ऐं कब्ज़े ख़िलाफ़ु हिकमत अमली तयारु करे वरिती आहे। खातनि मां बदिली या रिटायर थींदड़ आफ़ीसरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जे लाइ लाॻापियल खातनि खे हिदायतूं जारी कयूं वियूं आहिनि। उन हवाले सां काल्ह क़ानून खाते पारां समूरनि सरकारी खातनि जे सेक्रेटरियुनि खे ख़त लिखी खनि हिदायत कई वई आहे त गैर लाॻापियल ऐं गैर क़ानूनी तौर ते गाॾियूं इस्तेमालु कंदड़ आफ़ीसरनि खां गाॾियूं वापसि वरितियूं वञनि। खाते खे उहा बि हिदायत कई वई आहे त सरकारी गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन, मौजूदा लोकेशन ऐं लाॻापियल आफ़ीसरनि जी अपडेट लिस्ट तयारु कई वञे। सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी 9 अक्टूबर ते कराचीअ ॾांहुं प्यादल लॉन्ग मार्च करण जो ऐलान करे छॾियो। सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जे कन्वेनर ज़ुबी अला मस्तोई, फ़ख्र ज़मा खुहारो ऐं ॿियनि हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सदन जिदोजहद खे 65 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, जॾहिं त एहतजाजी कैंप बि 65 ॾींहं गुज़रण बावजूदु जारी आहे। हुननि चयो त मशल बरदार रैली नसीम नगर चौक खां SPPS जे साम्हूं एहतजाजी कैंप ताईं कढी वई, जॾहिं त मेरिड जे जनाज़े जी रैली पिणु कढी वई। हाणे 9 अक्टूबर ते जुमे जे ॾींहुं कराची जे तरफ़ प्यादल मेरिट लॉन्ग मार्च कयो वेंदो। हुन चयो त लॉन्ग मार्च कराची पहुची CM हाउस तरफ़ वेंदो ऐं उते एहतजाज कयो वेंदो। लॉन्ग मार्च दौरान खेनि कुझु बि थियो त उन जी ज़िमेवार सिंधु हुकूमत हूंदी, जॾहिं त ईंदड़ हिकमत अमली कराचीअ में लॉन्ग मार्च दौरान तय कई वेंदी। हुन चयो त सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जो प्यादल लॉन्ग मार्च हैदराबाद मां निकिरंदो ऐं टंडो मोहम्मद खान, झिरक ऐं ठटे खां थींदो कराची पहुचंदो। हुन चयो त जेकॾहिं सिंधु हुकूमत सदन समूरा मुतालबा मञी वठे थी त लॉन्ग मार्च रोके सघे थो। एडवोकेट इसार हुसैन चांग चयो त सॼी सिंध जा वकील पहिरें ॾींहं खां शागिर्दनि सां गॾु आहिनि ऐं शागिर्दनि जे हर फ़ैसिले मार्च ऐं एहतजाज में साणनि गॾु हूंदा।

0: पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध हुकूमत कराची, हैदराबाद ए सखर डिवीजन में 25-30 सितंबर 2026 तक कलम 144 लागू कर छोड़ो है। हुकूम तहत 5 या मानून के गड थियण एहतजाजी रैलिन जलसन ए जुलूसन से पाबंदी होंगी। हुकूमत जो मौकफ़ है तो ही कदम अमन अमान बरकरार रखण ए कें भी अणवणंदड़ सूरत हाल का बचण लाय खयो वियो आहे। पर इन फैसले सा गड केतरा ही अहम सवाल भी सामू आया है। सियासी ए समाजी हल्क जो चवण है तो जैकॾहिं वाकई को मखसूस सिक्योरिटी खतरो मौजूद है तो उन बाबत अवाम के वाज़े जान दिनी वे रुगो आम पाबंदी लगाने से बेयकनी ए मुंझारो वधी सके तो। सिंध में इन वक्त मुख्तलिफ़ सियासी धुरियों एहतजाजन की तैयारी कर रही हैं, जदें तो कौमपरस्त जमायतू भी पांचे मुतालबन के लिए मुजाहरन ऐलान कर चुकियो। अड़े पस मंदर में कलम 144 के कुछ हल्का सियासी छिकताण से भी जोड़े रहा है, जदें हुकूमत उन खालिस इंतजामी ए हिफाजती कदम करार दई रही है। कानूनी माहिरन मूजिब कलम 144 हंगामी हालतुन के लिए एक आर्जी कानूनी अख्तियार है, जिनो इस्तेमाल जरूरत ए तनासुब के उसूल तहत थियण घुर्ज। पुरमन एहतजाज ए तशद वाली सरगर्मी में फर्क बरकरार रखण भी जमहूरी निज़ाम जो अहम हिस्सो है। हाँ नजरों हुकूमत से आन तो पाबंदी बाबत वजाहत जारी कंदी या हालतुन की बेहतरी से उन में नरमी आंदी वी। अमन अमान बरकरार रखण से गड शहर के बुनियादी हक़न जो तहफ़ भी रियासत की अहम जिम्मेवारी है। यो यो हिन वक्त तई जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दिंदा इजाजत है। अल्लाह निगहबान।
1: पहजो शहर पहजो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
2: GFM 90.8
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिनट ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: सुबह के

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे मां हां गुलाब खान बेण।

सिंध राउंडअप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज़ हलाईंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो सख़्तु फ़ैसिलो। बाबा जे कातलनि खे छो बचाई, नवाब शामी नौजवान आपघात करे छॾियो। सिंध सरकार ऐं ADP मी कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ऐं स्कूलनि जी अॾावत ते इतफ़ाक़। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसुनि जी ख़रीदारीअ जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध जे 5 साहिली ज़िलनि में 2.5 लख शागिर्दनि खे मांझांदो कराइण जो ऐलान, एग्रीमेंट थी वई। सिंध हुकूमत पारां रिटायर्ड कामोरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जो हुकुम। शागिर्दनि जो सिंध हुकूमत खे अल्टीमेटम, मेरठ जे बहालीअ जे लाइ शागिर्दनि जो 9 अक्टूबर ते हैदराबाद खां कराचीअ ताईं प्यादल लॉन्ग मार्च जो ऐलान। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, सिंध जे 3 वॾनि डिवीज़ननि में कलम 144 लागू, अमन अमान या सियासी एहतियात। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज़ ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फ़ैसिलो, NCCIA खां मदद तलब। उन हवाले खां काल्ह सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जे सदारत हेठि इतलात खाते जो अहम इजलास थियो, जंहिं में इतलात वारे सेक्रेटरी काशिफ गुलज़ार शेख ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास दौरान फेक न्यूज़, कूड़ी ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात जी रोकथाम, जदीद टेक्नोलॉजी ज़रिए मीडिया मॉनिटरिंग ऐं सिंध हुकूमत जे मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर बनाइण बाबति अहम फ़ैसिला कया विया। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण हिदायत कई फेक न्यूज़ जी रोकथाम जे लाइ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खां सहकार हासिल कयो वञे। फेक न्यूज़ ठाहींदड़नि ऐं पखेड़ींदड़नि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जे लाइ लाॻापियल इदारनि सां मौसर सहकार खे वधीक वधायो वञे। हुन चयो त कूड़ियुनि ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात ज़रिए कंहिं बि शख़्स या इदारे खे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश बर्दाश्त न कई वेंदी। हुन इतलात वारे सेक्रेटरी ऐं समूरनि शोबनि जे डायरेक्टरनि खे हिदायत कई त मेन स्ट्रीम ऐं सोशल मीडिया ते जदीद टेक्नोलॉजी जे मदद सां फेक न्यूज़ जी रोज़ानी बुनियाद ते कई वञे। हुन चयो त फेक न्यूज़ जे बरवक़्त निशानदही, तस्दीक ऐं तदारुक जे लाइ इतलात खाते में हिकु मौसर ऐं मरबूत मॉनिटरिंग निज़ाम जोड़ियो वञे, जॾहिं त फेक न्यूज़ जे तदारुक लाइ इतलात खाते ऐं NCCIA विच में सहकार खे वधीक मज़बूत बणायो वञे। हुन चयो त सिंध हुकूमत जो बयानियो अमन, रवादारी, बेनल सूबाई हम आहंगी ऐं क़ौमी इतिहाद ते ॿधलु आहे। हुन हिदायत कई त सिंध हुकूमत जे हिन मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर ऐं मज़बूत बणाइण लाइ इज़ाफ़ी क़दम खया वञनि। इतलात खातो डिजिटल प्लेटफॉर्मनि मां भरपूर फ़ाइदो वठंदे सिंध हुकूमत जे मुस्बत क़दमनि ऐं अवामी भलाई जे मनसूबनि खे मौसर अंदाज़ में उजागर करे। हुन हिदायत कई त मुआशर जे समूरनि तबक़नि जे नुमाइंदनि खे सिंध हुकूमत जे बयानीअ जो हिसो बणायो वञे। इतलात खातो फेक न्यूज़ जी मॉनिटरिंग सां गॾोगॾु सिंध हुकूमत जे मुस्बत बयानीअ जी मौसर तशहीर ते पिणु ख़ासि ध्यानु ॾिए। नवाब शामी 24 सालनि जे नौजवान दीदार भंगवार पंहिंजी अमड़ सदोरीअ सां कावड़ जी पाण मथां पिस्टल जा फायर करे ख़ुदकुशी करे छॾी। 9 महीना अॻु दीदार जो वालिद गुलमोहम्मद भंगवार मोरो भरिसां क़तलु थियो हुयो। काल्ह सुनवाई दौरान जवाबदार मौलाबख्श भंगवार पेश थियो। केस जी फरियादियुनि मुस्मा सदोरी अदालत में बयान मटाए चयो त मौलाबख्श कातिल न आहे। वाज़े रहे त मौलाबख्श सदोरी जो सॻो भाउ ऐं मक़तूल दीदार जो मामू हो। होॾां दीदार भंगवार जे भाउ परवेज़ भंगवार चयो त मुंहिंजी अमड़ बाबा जे कातिल खे बचायो, जेको मुझे अमर जो भा हो, उन इतां भा नाराज़ थी खुदकुशी कई। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं एशियाई तरक़ियाती बैंक में सिंध जे सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ते इतफ़ाक़। काल ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त ADB जे माली मदद सां हलंदड़ SSAIP तहत 10 नवां अॼियल सेकेंडरी स्कूलनि जूं इमारतूं मुकमल कयूं वियूं आहिनि, जॾहिं त सिंध जे 10 ज़िलनि में 116 जदीद सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक अॾिया वेंदा। डिसंबर ताईं 200 खां वधीक स्कूल ऐं ईंदड़ महीननि में मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि तहत 800 खां वधीक स्कूल मुकमल करण जो पको
इरादो रखूं था। जॾहिं पंजनि अहम मनसूबनि में 2630 सेकेंडरी स्कूल जे उस्तादनि जी तरबियत मुकमल कई वई आहे। सूबे जे 7 तालीमी बोर्डनि में इम्तिहानी सुधारा लागू कया विया आहिनि। इजलास में कराची सर्कुलर रेलवे लाइ टर्म्स ऑफ रेफरेंस खे हतमी शिकिल ॾियण, ज़मीन जी दस्तियाबी जी तसदीक ऐं प्रोजेक्ट डिज़ाइन जे कम खे अॻिते वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसुनि जी ख़रीदारी जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। उन हवाले सां सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट जे निज़ाम खे वधाए रही आहे। असांजी कोशिशि आहे त जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत रुॻो कराचीअ ताईं महदूद न रहे। नवनि रूटनि जो मक़सदु शहरनि खे सस्ती ऐं बहितर सफ़री सहूलियत ॾियणु आहे। हुन चयो त 50 डबल डेकर बसूं 30 नवंबर ताईं कराची पहुची वेंदियूं, जिन खे मुख़्तलिफ़ रूट्स ते हलायो वेंदो। डबल डेकर बसुनि सां मुसाफ़िरनि खे इज़ाफ़ी सफ़र जी गुंजाइश मिलंदी। हुन चयो त लाड़काणे कंबर शहदादकोट में पीपल्स बस सर्विस शुरू करण सां अवाम तरफ़ां भरपूर मोट मिली रही आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं ख़ुराक वारे आलमी इदारे WFP में स्कूलनि में शागिर्दनि खे मानी खाराइण, ग़िज़ाइत, मौसमियाती लचक, अॻुवाट हिफ़ाज़ती क़दमनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ जे शोबे में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध पाइदार स्कूल खाधो प्रोग्राम इजलास जो मर्कज़ रहियो। उन प्रोग्राम जे लाइ लॻभॻ $80 million जी ग्रांट फ़राहम कई वई आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त सिंध जे 5 ज़िलनि खियामाड़ी, मलीर, सिजावल, ठटे ऐं टंडो मोहम्मद खान जे 1336 सरकारी स्कूलनि जे 2.5 लख शागिर्दनि खे लंच फराहम थींदी। सेव दी चिल्ड्रन इंटरनेशनल पारां सिजावल, ठटे ऐं टंडो मोहम्मद खान में प्रोग्राम ते अमल दरामद कंदो। खियामाड़ी ऐं मलीर में WFP जो प्रोग्राम 614 स्कूलनि जे 1 लख शागिर्दनि खे 5 सालनि दौरान फ़ाइदो पहुचाईंदो। प्रोग्राम तहत स्कूलनि में खाधे जी फराहमीअ सां गॾु वाश सहूलियतुनि जी बहाली, ग़िज़ाइत बाबति तालीम, ख़ुराक जे तहफ़ुज़ ऐं सफ़ाई, ॿारनि जे तहफ़ुज़ ऐं तालीमी सरगर्मियुनि खे हथी ॾियणु शामिल आहे। इजलास में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम लाइ WFP जे सहकार, माउ ऐं ॿार जी ग़िज़ाइत, शदीद ग़िज़ाई खोट जी कम्यूनिटी सतह ते इंतज़ाम ऐं मौसमियाती लचक बाबति मनसूबनि जो पिणु जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त ख़ुराक, ग़िज़ाइत ऐं इंसानी सरमाए जी तरक़ी पायदारी तरक़ीअ जा बुनियादी थंभ आहिनि। स्कूल खाधो प्रोग्राम ॿारनि जे मुस्तक़बिल में सीड़पकारी आहे। ग़िज़ाई खोट खे मोह ॾियण ऐं स्कूलनि में ॿारनि जी हाज़िरी बहितर बनाइण जे लाइ सिहतमंद ऐं खुशहाल सिंध जो बुनियादु रखियो पियो वञे। सिंध हुकूमत पारां सरकारी गाॾियुनि जी गैरक़ानूनी इस्तेमालु ऐं कब्ज़े ख़िलाफ़ु हिकमत अमली तयारु करे वरिती आहे। खातनि मां बदिली या रिटायर थींदड़ ऑफिसरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जे लाइ लाॻापियल खातनि खे हिदायतूं जारी कयूं वियूं आहिनि। उन हवाले सां काल्ह क़ानून खाते पारां समूरनि सरकारी खातनि जे सेक्रेटरियुनि खे ख़त लिखी खेनि हिदायत कई वई आहे त गैर लाॻापियल ऐं गैर क़ानूनी तौर ते गाॾियूं इस्तेमालु कंदड़ ऑफिसरनि खां गाॾियूं वापसि वरितियूं वञनि। खाते खे उहा बि हिदायत कई वई आहे त सरकारी गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन, मौजूदा लोकेशन ऐं लाॻापियल ऑफिसरनि जी अपडेट लिस्ट तयारु कई वञे। सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी 9 अक्टूबर ते कराचीअ ॾांहुं पैदल लॉन्ग मार्च करण जो ऐलान करे छॾियो। सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जे कन्वेनर ज़ुबी अला मस्तोई, फ़ख्रु ज़मा खुहारो ऐं ॿियनि हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सदन जिदोजहद खे 65 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, जॾहिं त एहतजाजी कैंप बि 65 ॾींहं गुज़रण बावजूदु जारी आहे। हुननि चयो त मशल बरदार रैली नसीम नगर चौक खां SPPS जे साम्हूं एहतजाजी कैंप ताईं कढी वई, जॾहिं त मेरिड जे जनाज़े जी रैली पिणु कढी वई। हाणे 9 अक्टूबर ते जुमे जे ॾींहुं कराचीअ तरफ़ प्यादल मेरिट लॉन्ग मार्च कयो वेंदो। हुन चयो त लॉन्ग मार्च कराची पहुची CM हाउस तरफ़ वेंदो ऐं उते एहतजाज कयो वेंदो। लॉन्ग मार्च दौरान खेनि कुझु बि थियो त उन जी ज़िमेवार सिंध हुकूमत हूंदी, जॾहिं त ईंदड़ हिकमत अमली कराचीअ में लॉन्ग मार्च दौरान तय कई वेंदी। हुन चयो त सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जो प्यादल लॉन्ग मार्च हैदराबाद मां निकिरंदो ऐं टंडो मोहम्मद खान, झिरक ऐं ठटे खां थींदो कराची पहुचंदो। हुन चयो त जेकॾहिं सिंध हुकूमत सदन समूरा मुतालबा मञी वठे थी त लॉन्ग मार्च रोके सघे थो। एडवोकेट इज़हार हुसैन चांग चयो त सॼे सिंध जा वकील पहिरें ॾींहं खां शागिर्दनि सां गॾु आहिनि ऐं शागिर्दनि जे हर फ़ैसिले मार्च ऐं एहतजाज में साणनि गॾु हूंदा।

0: पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु हुकूमत कराची, हैदराबाद ए सखर डिवीजन में 25-30 सेप्टेम्बर 2026 तक कलम 144 लागू कर छोड़ो है। हुकूमत तहत 5 या मानून जे गद थियण एहतजाजी रैलिन जलसन ए जुलूसन से पाबंदी होंगी। हुकूमत जो मौकफ है तो ही कदम अमन अमान बरकरार रखण कें भी अणवणंदड़ सूरत हाल का बचण लाए खो वो है। पर इन फैसले का गड केतरा ही अहम सवाल भी सामू आया। सियासी समाजी हल्क चवण है तो जैसे वाकई को मखसूस सिक्योरिटी खतरो मौजूद है तो उन बाबत अवाम के वाजे जान दिनी वे रुगो आम पाबंदी लगन से बेयकनी ए मुंझारो वधी सके तो। सिंध में इन वक्त मुख्तलिफ़ सियासी धुरियों एहतजाजन की तैयारी कर रही हैं जदें तो कौम परस्त जमायतू भी पांचे मुतालबन के लिए मुजाहर जलान कर चुक्य हैं। अड़े पस मंजर में कलम 144 के कुछ हल्का सियासी छिकताण से भी जोड़े रहा जदें तो हुकूमत उन खालिस इंतजामी हिफाजती कदम करार दई रही है। कानूनी माहिर मूजिब कलम 144 हंगामी हालतों के लिए एक आर्जी कानूनी अख्तियार है जिनो इस्तेमाल जरूरत ए तनासुब के उसूल तहत थियण घुर्जे। पुरमन एहतजाज ए तशद वाली सरगर्मी में फर्क बरकरार रखण भी जमहूरी निज़ाम जो अहम हिस्सों है। हाँ नजरों हुकूमत आन तो पाबंदी बाबत वजाहत जारी कंदी या हालतों की बेहतरी से उन में नरमी आंदी वी। अमन अमान बरकरार रखण से गड शहर के बुनियादी हकन जो तहफुज भी रियासत की अहम जिम्मेवारी है। हुई वक्त तीन जो सिंध राउंडअप बे आचर के सिंध राउंडअप तीन गुलाब खान भेण के दींदा इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: जो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8।